मीडियम वीप 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूजान EIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक्सुमत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026, 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से

0: होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी की देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं रघुनाथ प्राणीग्रही के स्वर में ये पारंपरिक रचना।

रघुनाथ पाणिग्रही के स्वर में ये पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं समूह स्वर में दत्तदास की ये रचना।

समूह शर्मिली थी दत्तदास की भक्ति रचना। आइए अब सुनते हैं शुभा मुद्गल के स्वर में ये भजन।

शुभा मुद्गल के स्वर में ये रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में कवि नारायण अग्रवाल की ये रचना।

0: जगजीत सिंह के स्वर में ये थी कवि नारायण अग्रवाल की रचना। इसके साथ ही अब आज की वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्रीमती शाकंबरी टंडन का है।
1: पीढ़ियों का अंतर कहें या फिर पीढ़ियों की अंतर्व्यथा, इसकी कथा में कसक भरी तड़पन है, गहरी चुभन है, जिंदगी की ढलती सांझ सिसकियों में सिमटी है और जिंदगी की चमकदार सुबह अनजाने अब धुंधली हो रही है। आज कई परिवारों में दादा दादी नाना नानी को उनके पोते पोतियों का दुलार नहीं मिल पा रहा है और पोते पोतियां नाती नातिने अपने दादा दादी नाना नानी की गोद में बैठकर मीठी मीठी कहानियां नहीं सुन पा रहे हैं। इस सबके लिए स्वयं नाना नानी दादा दादी और बच्चों के माता पिता ही जिम्मेदार हैं। इस सुख के स्वयं वे ही बड़ी बाधा बन गए हैं। कुछ समय पूर्व ही भारतीय परिवारों के घर आंगन प्रायः तीन पीढ़ियों की हंसी खुशी से भरे ठहाके कह कहे गूंजते रहते रहे हैं, पर अब यह गूंज कुछ वर्षों से फीकी सी पड़ गई है। वैसा अब कुछ नहीं रह गया है जिसके लिए भारत की परिवार व्यवस्था कभी सुविख्यात हुआ करती थी। इस अवस्था को लोग जनरेशन गैप या पीढ़ियों का अंतर मानते हैं। यह अंतर आज ही क्यों, पहले भी रहा होगा, परंतु इसका प्रभाव शायद बहुत कम रहा होगा, जो पता नहीं चलता रहा होगा। लेकिन आजकल यह प्रभाव बहुत ज्यादा दिखने लगा है। कारण कि जो युवा हैं और प्रौढ़ जो हैं, वे एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते। दोनों पीढ़ियों की शिकायत है कि अगला उन्हें समझना ही नहीं चाहता। हर एक के अपने तर्क तथ्य और प्रभाव हैं। इन सभी के बीच जिंदगी की डोर ऐसी उलझ गई है कि सुलझने की बजाय टूटने लगी है। बात सचमुच बहुत पीड़ा की है। जब अपने ही बच्चे अपनी ही न सुने, तिरस्कृत करें, यहां तक कि घर से बाहर कर दें, इसी तरह वे बच्चे भी क्या करें जब माता पिता उनकी भावनाओं और विवशताओं को सुनने समझने से इनकार कर दें। विचारों का अंतर तो स्वाभाविक ही है, पर इस अंतर को संवाद द्वारा भी हल किया जा सकता है। बच्चों की हर बात में टोका टाकी की जाए, ये तर्क संगत और न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार माता पिता को अनुपयोगी और अस्वीकार्य कहा जाए, ये भी उचित नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी हो चली हैं कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का मन एक दूसरे के प्रति शिकायत से भरा हुआ है। हरेक के अपने अपने तर्क हैं, तथ्य हैं। विद्वान लोग इस पीढ़ी के अंतर के विवाद के पांच कारण बताते हैं। एक तो संस्कार विहीन शिक्षा, दूसरे आर्थिक परिस्थितियां, तीसरे आज की मशीनी जिंदगी और चौथा कारण है सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा और पांचवा कारण है सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति आस्था में आई भारी कमी। संस्कार विहीन शिक्षा के कारण पारिवारिक संबंधों में दरार आई है। दया, प्रेम, सेवा, त्याग और सहनशीलता की बात भूलते जा रहे हैं कुछ लोग। इस वजह से वो अपने माता पिता को अपने जीवन की बाधा मानने लगे हैं। दूसरा कारण आर्थिक परिस्थितियां हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कम आमदनी के कारण माता पिता की आवश्यकताओं आदि खर्चे बोझ लगने लगते हैं। तीसरा कारण आज की मशीनी जिंदगी है। परिवार के बड़े खर्च के लिए अधिक धन कमाने की चाहत ने जीवन का मशीनीकरण कर दिया है। माता पिता अपने बेटे बहुओं की इस व्यस्तता को अपनी उपेक्षा समझने लगे हैं। चौथा कारण सामाजिक दायित्वों

0: प्रति उपेक्षा है। इस वजह से कोई अपने स्वार्थ और अपने अहम से उबर नहीं पा रहा है। उनके लिए अपनी उपलब्धियां ही सब कुछ हो गई हैं। पांचवा कारण, सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति आस्था में कमी है। जिस महान संस्कृति में हम अपने दिवंगत बुजुर्गों को यानी पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उसी संस्कृति के अनुयायी अपने माता पिता की उपेक्षा करने लगे, ये बात चिंतनीय है। अगर सब एक दूसरे को समझे तो ये पीढ़ी का अंतर परेशानी का नहीं वरन सुख शांति और समृद्धि का कारण बनेगा।
1: ये था चिंतन, आलेख श्रीमती शाकंबरी टंडन का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड नंबर 217 217।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा पशुधन इस कार्यक्रम में आज सुनिए पशु और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जीवाणु प्रोबायोटिक्स, जानकारी देते हुए डॉक्टर नमिता शुक्ला।
1: किसान भाइयों, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में बीमारी, संक्रमण, गंदगी की तस्वीर उभर आती है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि बैक्टीरिया से दूर रहो, हाथ साफ रखो, खाने को ढक कर रखो, और ये बात सही भी है क्योंकि वास्तव में बहुत सारे जीवाणु रोग पैदा करते हैं। इनमें से ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कोलरी इत्यादि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे नेचर में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे लिए वरदान की तरह हैं, जो हमारे शरीर में रहकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा भोजन पचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। इन्हीं उपयोगी मित्र जीवाणु को हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। WHO के अनुसार प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव है जिसका उचित मात्रा में सेवन करने पर शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचता है। ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। इनकी संख्या करोड़ों अरबों में है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के कोशिकाओं से भी ज़्यादा है। प्रोबायोटिक के मुख्यतः दो समूह पाए जाते हैं, एक लैक्टोबेसिलस और दूसरा बिफिडोबैक्टीरियम। प्रश्न ये उठता है कि ये जीवाणु कहाँ से मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जीवाणु हमारे किचन में ही पाए जाते हैं, जैसे कि दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी, इडली, ढोकला, अचार, कांजी, ये सब बहुत अच्छे स्रोत हैं प्रोबायोटिक्स के। मानव स्वास्थ्य में प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे लाभ हैं। यह पाचन स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इसमें मौजूद जो मित्र जीवाणु हैं वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक हैं। ये डायरिया के रोकथाम के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। बच्चों में होने वाले रोटा वायरस, दस्त और एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव को भी ये कम करते हैं। यह प्रोबायोटिक्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। यह केवल हमारे भोजन को ही नहीं पचाते बल्कि हमारे शरीर के रेजिस्टेंस पावर को भी बढ़ाते हैं। और बहुत सारे विटामिन B12, विटामिन K और बहुत सारे मिनरल के एब्जॉर्प्शन प्रोबायोटिक की सहायता से ही हो पाते हैं। इस प्रोबायोटिक का हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव है। मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रोबायोटिक के गाय और भैंस में दूध प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। और एक मस्टाइटिस, जिसे थनेला कहते हैं, इसके रोकथाम के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। मुर्गी पालन में, विशेषकर ब्रॉयलर और लेयर के, वजन बढ़ाने में प्रोबायोटिक की अहम भूमिका है। और एग प्रोडक्शन में भी को भी बढ़ाने में प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल हैं। बकरी और भेड़ पालन में इसके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। सूकरों के पालन में दस्त की रोकथाम और वजन वृद्धि के लिए प्रोबायोटिक अत्यंत उपयोगी है। मछली

0: पालन में ये मछलियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है इस प्रोबायोटिक का। इस प्रोबायोटिक के उपयोग के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव ये हैं कि आपको अपने दिनचर्या में एक कटोरी ताज़ा दही या छाछ अवश्य शामिल करना चाहिए भोजन में, और एंटीबायोटिक लेने के बाद कम से कम एक सप्ताह तक अपने भोजन को प्रोबायोटिक युक्त ही सेवन करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक से जो आपके अच्छे जीवाणु नष्ट हो चुके हैं वो प्रोबायोटिक की सहायता से पुनः उसको डेवलप किया जा सकता है। और पशुपालक भाई बहनों को ये सलाह देना चाहूँगी कि अपने एनिमल का, अपने जानवरों का अपना खुद से इलाज ना करें। अगर आपके पशु बीमार पड़ते हैं तो उसको एक डॉक्टर के से परामर्श से ही उसको प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक दें। प्रोबायोटिक देते समय किसान कुछ मुख्य बातों का विशेष ध्यान दें। प्रोबायोटिक हमेशा विश्वसनीय कंपनी और संस्थान से लें। उत्पादन की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। प्रोबायोटिक को धूप और नमी से बचा कर रखें। उसकी मात्रा सही और सही अवधि तक दें। बीमार पशुओं को पहले डॉक्टर की सलाह से ही उसको प्रोबायोटिक्स दें। प्रोबायोटिक्स को बहुत अधिक गर्म पानी और दूध में मिलाकर ना दें, क्योंकि प्रोबायोटिक क्या है, एक जीवित सूक्ष्म जीव है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नष्ट हो सकते हैं। और सामान्यतः इसकी मात्रा सही और अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोबायोटिक को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर गलत उत्पादन, खराब गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट वाला और बिना सलाह के अधिक मात्रा में उपयोग करने से लाभ की बजाय नुकसान भी कर सकते हैं।
1: पशु और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जीवाणु प्रोबायोटिक्स, हमारा पशुधन, इस कार्यक्रम में जानकारी दी डॉक्टर नमिता शुक्ला ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनेंगे रात 10:00। नमस्कार रायपुर ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:05 पर। आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेंगे सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा सुबह 9:00, इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्करण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा। दोपहर 12:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। शाम 6:30 पर कलाकार होंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनेगा बिजोली पंडा का सितार पर बजाया राग नट भैरव। इसी कार्यक्रम में इन्हीं का सितार पर बजाया राग किरवानी सुनेगा रात 10:30 पर। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 11:05 पर। महाभारत की शकुंतला ये नाटक सुनिएगा दोपहर 1:30 पर, लेखक और निर्देशक श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे आजकल, पत्रमिला और यादें। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, इसमें किसान भाई आज सुनेंगे आज की बात, इसमें पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस, ये महीना के कृषि कार्य, इस विषय पर चर्चा। आज की सलाह इसमें विषय होगा जय उर्वरक अपनाएं और उत्पादन बढ़ाएं। जानकारी देंगी दीपमाला लकड़ा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पौध रोग, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दोपहर 12:00, हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। चित्रपट संगीत का आनंद लेंगे सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। श्रोताओं हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार रायपुर ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:05 पर। आपके पत्र सुबह 8:30 पर और गांधी चर्चा सुबह 9:00, इसमें आज आप सुनेंगे

0: महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 11:05 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92.6 लाख 95 हजार करोड़ रुपयेकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढसमन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनाङ्कतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20/26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावलिः 20/19

0: सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्यप्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की।

0: कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह की 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोता दोस्तों, कैसे हैं आप। राजधानी रायपुर के आकाश में बादल छाया हुआ है। अल सुबह घटा छा रही है, शीतल पुरवाई बह रही है। उमस से थोड़ी राहत मिली है, किंतु बारिश का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। बीच बीच में अचानक बादलों का छंट जाना, तेज धूप माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती है। एक तरफ मानसून की बेरुखी, तो वहीं दूसरी ओर हमारी आंखों में आस और विश्वास का हिलोरे मारता सागर। उम्मीद है सागर सामन जरूर लाएगा। बस ये आस और विश्वास ही हमारी जिंदगी का फलसफा है। कृषि वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि जून महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होने पर खरीफ सत्र में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। किंतु आस और विश्वास का दामन हमने कभी न छोड़ा है न छोड़ेंगे, क्योंकि जीवटता हमारी नसों में रक्त बनकर प्रवाहित होती है। सुख हो या दुख, खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में समय के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखने की चाहत, आगे बढ़ने का हौसला हमारी फितरत है, हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। उतार चढ़ाव, हर्ष विषाद, हर मौके पर हम सपने बुनते हैं और उन सपनों को साकार करने हर संभव कोशिश भी करते हैं। तभी तो कहा गया है

श्रोताओं, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और GST दिवस तथा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत 1991 में हुई थी। ये दिवस चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद डॉक्टर बिधान चंद्र राय को समर्पित है। ये दिवस भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सकों के समर्पण और अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। डॉक्टर देश के सिपाही हैं, वे जो सीमाओं पर लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने और जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। मानव स्वास्थ्य के प्रति उनका योगदान अतुलनीय है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया गया ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी जा सके। डॉक्टर बीसी राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को और उनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को हुआ था, जो कि एक विचित्र संयोग है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और राजनीतिज्ञ थे। 4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना जीवन जनसेवा में समर्पित किया, अनेक लोगों का इलाज किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। सचमुच ये जीवन औरों के लिए दूसरों के नाम है और भारतवर्ष इस पावन भूमि की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। तभी तो कहा गया है।

श्रोताओं, इन दिनों प्रदेश में सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें 29 जून से 6 जुलाई तक लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसका उद्देश्य सहकारिता

से ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, सहकारी संस्थाओं का विस्तार तथा आम लोगों को सहकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस अवसर पर रायपुर जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला स्व सहायता समूहों, अन्य सहकारी संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता तय की जाएगी। हफ्ते भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सदस्यता विस्तार अभियान, सहकारिता जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान, मॉडल पैक्स भ्रमण, जन औषधि केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण, सहकारी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार तथा उत्कृष्ट सहकारी संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्मान शामिल होगा। इन कार्यक्रमों से सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी बुवाई विधि। आपकी समस्याओं जिज्ञासाओं के

आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी बुवाई विधि। आपकी समस्याओं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482-400-3482, 4003483-400-3483 और 4003484-400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771-0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 बजे किया जाएगा। श्रोता दोस्तों, हमारे टैक्स से सरकार बेहतर नागरिक सुविधाएं देती है। रायपुर नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अवैध नल कनेक्शन को वैध करने आग्रह किया है। इसके लिए निगम प्रशासन एक मुश्त जलकर निपटान योजना लेकर आया है। इसके तहत ऐसे सभी नल कनेक्शन जो नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उन्हें वैध करने का अंतिम अवसर है। इसके लिए नजदीकी जोन कार्यालय में 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए एक मुश्त राशि जमा करना अनिवार्य किया गया है। निगम का कहना है कि यदि 15 अक्टूबर तक आवेदन नहीं किया जाता है तो कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही नियमितीकरण शुल्क की 3 गुना राशि का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो मित्रों, रहें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब बिजली बिल तय तारीख के बाद जमा करने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। उपभोक्ता भुगतान जितनी देरी से करेगा केवल उतने ही दिनों का उसे सरचार्ज चुकाना होगा। इससे ज्यादा फायदा उन्हें होगा जिनका भुगतान किसी कारण से एक दो दिनों की देरी से होता है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने बिजली बिल की नई दरों के साथ भुगतान में विलंब पर दिन के अनुसार सरचार्ज की घोषणा की थी। आज 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब तक यदि किसी उपभोक्ता ने बिल की अंतिम तारीख निकलने के बाद सिर्फ 1 दिन की देरी से भुगतान किया तो उसे पूरे महीने का 1.5% लेट पेमेंट सरचार्ज वसूला जाता था। इससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता था। आज 1 जुलाई से नई व्यवस्था में उपभोक्ता जितने दिन विलंब करेगा केवल उतने ही दिनों का सरचार्ज लगेगा। यदि भुगतान 30 दिन बाद भी किया जाता है तब भी कुल 1.2% ही लेट पेमेंट चार्ज लगेगा, जो पहले के 1.5% से कम है। हम इस फार्मूला को इस प्रकार समझें कि जैसा कि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 5,000 रुपये आया है, पुरानी व्यवस्था में यदि बिल 1 दिन भी लेट जमा किया जाता था तो पूरे महीने का 1.5% यानी 75 रुपये सरचार्ज देना पड़ता था। नई व्यवस्था में 1 दिन की देरी पर सिर्फ 0.04% या

लगभग 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 5 दिन की देरी पर करीब 10 रुपये, 10 दिन की देरी पर करीब 20 रुपये और 30 दिनों की देरी पर लगभग 60 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। यानी जितनी कम देरी उतना कम अतिरिक्त भुगतान पहले की तुलना में। तो मित्रों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, रथ यात्रा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच ट्रेन संख्या 08801 और 08802, 08801 और 08802 इन दोनों ट्रेनों को चार चार फेरों के लिए चलाने का फैसला किया है। गोंदिया से ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को चलेगी। यह दुर्ग से शाम 3:58 से निकलेगी और रायपुर से 5:10 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे पूरी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पूरी से दोपहर 1 बजे चलेगी और अगले दिन तड़के 3:10 पर रायपुर, 4:28 पर दुर्ग और सुबह 7 बजे गोंदिया पहुंचेगी। ट्रेन डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, शपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाबांजी, टिटलागढ़, बलांगीर, बरगढ़ रोड, संबलपुर, अंगूल, तालचेर रोड, ढेंकानाल, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा स्टेशनों पर रुकेगी। मित्रों, भारतीय रेल न केवल हमारी समृद्धि का, हमारी आर्थिक उन्नति का एक आधार है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का जीवंत उदाहरण भी है। तभी तो कहा गया है,

श्रोताओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। बस हमें सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत 2026 और 27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। पहले स्थगित की गई प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू करते हुए विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा 5 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य के चयनित उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश दिया जाता है। इसमें शैक्षणिक शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है तथा विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा मिलती है। तो मित्रों, योजनाओं का लाभ उठाएं और सुनें ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण सूचना। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई से बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 कर दी गई है। ये पाठ्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIITNR में संचालित होगा। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी और उनकी पूरी ट्यूशन फीस का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन करेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इच्छुक अभ्यर्थी 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश और आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी IIITNR की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी संस्थान के दूरभाष क्रमांक 07712474048-0771-2474-048 और 07712474-182

0771-24-74-182 पर भी संपर्क साधकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों की वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा शासन की डिजिटल सेवाओं और नवाचार आधारित परियोजनाओं में योगदान देने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद दोस्तों एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

नमस्कार रायपुर, इस सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8

0: भेजने वाले हैं समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया।

0: की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल

0: में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभाव

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और सौम्या का
0: नमस्कार। सौम्या जी, देखिए आज है 1 तारीख और आधा साल बीत चुका है, आधा साल बाकी है और बाकी है पूरी बारिश, क्योंकि हमारे सभी श्रोताओं को बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आसमान पर छाते काले बादल हमें इस उम्मीद के और करीब ले जा रहे हैं कि बहुत जल्द बरखा रानी की रिमझिम फुहारें हम सबको भिगोएंगी। बहरहाल ये पत्र तो हर हफ्ते हमें भिगोते हैं हमारे श्रोताओं की प्यार भरी बारिश के साथ। तो बताइए ये पहला पोस्टकार्ड किसका है
1: दीपक जी? ये पहला पोस्टकार्ड है अमरपुर पेंड्रा से सुरुचि देवी और रूही श्रीवास्तव का। आप लिखते हैं, 9 जून को प्रसारित मोर भुइया सुनने को मिला, इसमें कवि गोष्ठी जो प्रसारित की गई बहुत बहुत पसंद आई। इसे कविगण ईश्वर साहू, शिव कुमार अंगारे और सुनंदा शर्मा जी ने पेश किया। इसमें पहले तीनों कवियों ने गर्मी आगे की कविता पढ़ी, फिर तीनों कवियों के बरसात के अगोरा हवा के गीतों ने मन को मोह लिया। तीनों कवियों के साथ महेंद्र साहू और आकाशवाणी केंद्र को बहुत बहुत बधाई।
0: मोर भुइया के इस अंक में कवियों ने कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। जो आपको पसंद आया ये हमारे प्रसारण की सार्थकता है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दतरिंगी से विश्राम और पार्वती यदु लिखते हैं, 10 जून को आपके पत्र में दीपक हटवार और सौम्या रिजवी का पत्र वाचन हमें बहुत अच्छा लगा।
0: आपके पत्र कार्यक्रम जब भी हमारे श्रोता रेडियो के करीब आकर सुनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि रिश्तों की ये जो डोर है ना, इसकी मजबूती और भी बढ़ गई है और आपके पत्र हमें सतत रूप से आपके और हमारे समीप होने का एहसास कराते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बेमी तरह से सुरेश और पूर्णिमा सारथी लिखते हैं, 14 जून रविवार को देवव्रत भगत के द्वारा नमस्कार रायपुर सुना। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जो बिना किसी रुकावट के रक्तदान कर सकते हैं। कहते हैं ना, नेत्र और रक्तदान महादान होता है। नेत्रहीन को संसार को देखने और परखने की क्षमता मिल जाती है। रक्त की किसी व्यक्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जो रंगमंच के लिए हैं उन्हें पुरस्कृत किया गया। उनसे बातचीत अच्छी लगी। देवव्रत भगत के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी बधाई। सिमगा से लवकुश सेन और प्रहलाद सेन लिखते हैं, दीपक जी 16 जून को सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर जिसे प्रस्तुत किया था शशांक खरे जी ने, उनका कार्यक्रम मन को मोहित कर गया। गीतों का चयन बहुत ही कर्णप्रिय था। अच्छी प्रस्तुति के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई।
0: सौम्या जी, मौसम कोई भी हो, नमस्कार रायपुर की सुबह हमारे श्रोताओं को हर रोज नई ताजगी का एहसास कराती है और उस ताजगी के साथ नई नई जानकारियां होती हैं, मधुर संगीत होता है जिसे सुनकर हमारे श्रोता फिर से एक बहुत ही खूबसूरत दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं
1: जी।
0: तो ये कार्यक्रम यूं ही आपके घर आंगन को नई ऊर्जा से परिपूर्ण करता रहेगा। पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: नर्मदा धाम सुरसुली से डिकेंद्र और योगेश यादव लिखते हैं, 14 जून को कृषि चर्चा कार्यक्रम सुना जिसमें कीड़ों के नियंत्रण हेतु स्टीकर कीट का उपयोग, उस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी डॉक्टर खूबीराम साहू से सुनी जो हमें महत्वपूर्ण प्रेरणादायक और उपयोगी लगी।
0: 5 मिनट के कृषि चर्चा कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों के लिए नवीन तकनीक और नवीन उपायों से जुड़ी जानकारी दी जाती है ताकि उनकी फसल की पैदावार भी अच्छी हो और कीटनाशकों का हम उचित उपयोग कर सकें। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: मगलोड से पुनुराम और तेजेश्वरी साहू लिखते हैं, 16 जून के मोर भुइया कार्यक्रम में जुन्ना सियान साहित्यकार सुरजीत नवदीप जीले समीर शुक्ल के हुए गोटबाद सुने बर मिलिस। ए कार्यक्रम के प्रसारण हा पहली औ हो चुके हैं, तब हम नहीं सुन पाए रहन। आज जब सुनें तब बड़ खुशी लागिस। कवि सम्मेलन के नाम ही मंच संचालक सुरजीत नवदीप

0: इहा अपन साहित्यिक सेवा और सफलता के सबो बादला बतावत अपन लिखे छत्तीसगढ़ी कविता घलो सुनाइन। सुरजीत जी संग गोड़ बात करैया समीर शुक्ल जी संग प्रस्तुत करता और आकाशवाणी रायपुर केंद्र ला बहुत बहुत धन्यवाद। मोर भैया की तारीफ में ये पत्र है नवागढ़ कटई से शारदा और दामिनी वर्मा का।
1: ऐसे अनेक साहित्यकार हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृतियाँ आज भी उनकी लेखनी का एहसास कराती हैं। उनके कविताओं को जब भी हम पढ़ते हैं तब सुनहरे दिनों की गुजरे दिनों की सुनहरी यादों में खो जाते हैं। सुरजीत नवदीप जी अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव अमर रहेंगे। इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा लिखते हैं, 17 जून को डॉक्टर वंदना काले जी का चिंतन आलेख दान का महत्व सीख देने वाला प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद लगा। साधुवाद, दानी व्यक्ति वही है जो अपना हित छोड़कर दूसरों का उपकार करे। और दीपक जी, इसी तरह से 13 जून को डॉक्टर शोभाकांत झा जी के चिंतन की तारीफ में ये पत्र है कोरदा से कलीराम यादव का। 20 जून के चिंतन के बारे में शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर लिखते हैं, संयमित व्यवहार पर केंद्रित 20 जून के चिंतन के लिए लेखक अजय अवस्थी जी को बधाई।
1: चिंतन के यही प्रेरक विचार आज भी हमें उतने ही सारगर्भित लगते हैं, सार्थक लगते हैं और प्रासंगिक लगते हैं कि आज भी मनुष्य अपने जीवन में चिंतन के इन विचारों को समाहित करे तो वो हमेशा बेहतरी के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: 18 जून को अनुरोध गीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। 20 जून को आपके मीत ये गीत पेश किया तारकेश्वरी आसुदानी ने। 22 जून को सुरों का सफर प्रस्तुत किया रेणुका काले ने। इन सभी कार्यक्रमों की तारीफ में पत्र भेजे हैं सिरी गातापार से धनेश्वरी और ओम प्रभा साहू ने, भाटापारा से चोवाराम और हरीश वर्मा ने, भाटापारा से ही अब्दुल मजीद कुरैशी ने, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद गुलशन कुमार वर्मा ने और धवलपुर से धनंजय और गेंदलाल मिश्रा ने। चित्रपट संगीत की तारीफ में इन्होंने पत्र भेजा है। दीपक जी,
1: हमारे फरमाइशी कार्यक्रम और चित्रपट संगीत को हमारे श्रोता बड़ी ही लगन के साथ सुनते हैं सौम्या जी।
0: जी,
1: और देखिए आज भी वे श्रोता जो ईमेल नहीं कर पा रहे हैं उनके पोस्टकार्ड फरमाइशी कार्यक्रमों में हम शामिल करते हैं, तो हमारे कार्यक्रमों की शोभा आपके नामों से और भी बढ़ जाती है। इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सौम्या जी, आज के सारे ही पोस्टकार्ड आपने पढ़ लिए।
0: जी,
1: अब ये ईमेल आपके हाथ में नजर आ रहे हैं तो बताइए ये पहला ईमेल किसका है।
0: गांव कुटेना पांडुका गरियाबंद से झामेश्वरी साहू और टीकम साहू लिखते हैं, इनसे मिलिए में मनु नायक जी फिल्म निर्माता से सुंदर गोड़ बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को दिल से धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम निर्माता निर्देशक और लेखक मनु नायक जी से की गई इस बातचीत का ये पुनः प्रसारण था जिसे आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता लिखते हैं, माह के अंतिम बुधवार को श्रोताओं से बातचीत की जाती है वो हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन एक सुझाव ये है कि इसे माह में दो बार श्रोताओं से बातचीत प्रसारित की जाए।
1: सौम्या जी, इस तरह के सुझाव पहले भी हमारे पास आए हैं, कुछ श्रोताओं ने तो इसे साप्ताहिक करने का सुझाव दिया है, तो फिलहाल आपके सुझाव को हम नोट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे लिखते हैं, छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक धरोहरें गौरवशाली इतिहास संस्कृति और वास्तुकला की अमूल्य पहचान है। 23 जून को आपके केंद्र से प्रसारित छत्तीसगढ़ी साहित्यिक समन्वित पत्रिका कार्यक्रम मोर भैया में एक बेहद रोचक ज्ञानवर्धक और उपयोगी भेंटवार्ता सुनने को मिली जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की एक पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के संदर्भ में ताम्र पट्टिका संरक्षक संजीव पांडे जी से महेंद्र साहू जी की रोचक बातचीत सुनने को मिली। पांडे जी ने मल्हार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को काफी विस्तार पूर्वक बताने का सराहनीय प्रयास किया। इस पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल का अत्यधिक महत्व इसलिए हो जाता है कि हाल में मई 2026 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में हुई खुदाई के दौरान मिली 1400 से 1500 वर्ष पुरानी दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है जिससे इस ऐतिहासिक नगरी का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। एक सार्थक और महत्व

0: महत्वपूर्ण भेंटवार्ता के प्रसारण के लिए संजीव पांडे जी और महेंद्र साहू जी सहित आकाशवाणी रायपुर को हमारी कोटिशा हार्दिक बधाई और इसी कार्यक्रम को पसंद किया है नानघाट कातलबोर से भाग सिंह और भाग्यश्री राजपूत ने।
1: सोमिया जी, जहाँ तक पुरातात्विक वैभव की बात है और खुदाई में प्राप्त प्राचीन वस्तुओं की बात है, तो इन महत्वपूर्ण चीजों के संकलन, संग्रहण और संरक्षण के लिए जो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का हिस्सा हमारे प्रदेश में पाई जाने वाली ये चीज़ें भी बनने जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इस बार के मोर भुइयां कार्यक्रम में इस पर की गई विस्तृत बातचीत हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी लगी, जानकर हमें खुशी हो रही है। पत्रों के लिए धन्यवाद
0: जी। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल लिखते हैं, 24 जून को प्रसारित आपके पत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आज के श्रोता क्रम में सिस देवरी पलारी के रेडियो श्रोता रवि शंकर चंद्राकर जी से दीपक हटवार जी की आत्मीय और रोचक बातचीत सुनने का हमें अवसर मिला। बातचीत के दौरान श्री चंद्राकर जी ने रेडियो से अपनी वर्षों पुराने जुड़ाव, श्रोता जीवन के अनेक यादगार अनुभवों और अपनी आप बीती को बेहद सहज, स्पष्ट और बेबाक अंदाज में साझा किया। दीपक हटवार जी ने भी अपने सहज, आत्मीय और प्रभावशाली प्रश्नों के माध्यम से बातचीत को अत्यंत रोचक बना दिया। आकाशवाणी परिवार हार्दिक बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। और दीपक जी, इसी कार्यक्रम को पसंद किया भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव ने, सिंघा से प्रदीप जैन ने, खुटगांव गरियाबंद से टिकेश्वर ध्रुव और कान्हा ध्रुव ने और घटारानी अंचल फुलझड़ से योगेश्वर और डुमेश्वरी साहू ने।
1: सौम्या जी, माह के अंतिम बुधवार को हम जिस श्रोता से बात करते हैं, वाकई उनके विचार, उनके अनुभव और आकाशवाणी से उनके बहुत पुराने रिश्ते की बातें सुनकर हमें भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारे कितने सारे श्रोता हैं सौम्या
0: जी,
1: जो अपने दिन भर के कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण सुनने के लिए समय निकालते हैं और प्रसारण सुनने के साथ साथ कार्यक्रमों की समीक्षा भी लिखकर भेजते हैं। तो हमारे ऐसे सभी सम्माननीय श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं।
0: हाँ, ये अगला ईमेल है रामचंद माखीजा का धमतरी से। ये लिखते हैं, 24 जून को कार्यक्रम गांधी चर्चा में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को याद किया गया। प्रकाश उदय जी और रमाशंकर जी को बहुत बहुत साधुवाद।
1: तो हम आशा करते हैं कि गांधी चर्चा का हर अंक हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही बहुमूल्य साबित होगा। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और श्रद्धा निर्मलकर लिखते हैं, सुशासन सरकार में नारी शक्ति को मिली है महिलाओं को नई उड़ान। ये उड़ान है समृद्धि की, स्वावलंबन की, विकसित छत्तीसगढ़ की। अगर आप सशक्त छत्तीसगढ़ का सपना देखते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी और हर नारी को सम्मान देना होगा। 25 जून को सुबह 9 बजे कार्यक्रम प्रगति के सोपान में नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत शांति विश्वकर्मा जी से प्रकाश उदय जी की भेंटवार्ता अच्छी लगी, दिल से धन्यवाद। और दीपक जी, इसी कार्यक्रम को पसंद किया है रायपुर से वैभव और चिराग जैन ने भी।
1: दृढ़ संकल्प, ऊंचाई को छूने का इरादा और जीवन में सदैव आगे बढ़ने की इच्छा, ये आज नारी शक्ति को एक नई पहचान दे रही है। और इसी नई पहचान का एक स्वरूप है हमारी वे बहनें जो ड्रोन के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और यही योगदान भारत की कृषि को भी उन्नत कृषि की ओर आगे बढ़ा रहा है। तो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का समावेश प्रगति के सोपान में किया जा रहा है, ताकि हमारे सभी श्रोता इन योजनाओं का सतत रूप से लाभ उठाते रहें। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी और लक्ष्मीना सोनवानी लिखते हैं, धन्य है वो छत्तीसगढ़ की वसुंधरा जहाँ बसता है मिनी भारत। दुर्ग भिलाई और यहाँ की बसाहट में जन्मे अखंड, अनंत, अद्वितीय, अद्भुत संगीतकार, फिल्मी गायक सुनील सोनी जी से आपने कार्यक्रम इनसे मिलिए में अपनी संगीत यात्रा, अपनी कला यात्रा को हम तक साझा किया, जो अति सराहनीय रहा। आपकी इस भेंटवार्ता को हम सहपरिवार बैठकर सुन रहे थे, जिसे पूरे परिवार ने सराहा है। आशा करते हैं कि आगे आप

0: दिन दुनी रात चौगुनी सफल और सहजता से रास्ता चुन छत्तीसगढ़ को दूरगामी कला संगीत प्रशस्त करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार आपको और इनसे मिलिए के भेंटकर्ता रमाशंकर जी को दिल से धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को पसंद किया है कोका भिलाई से उत्तम सिंह और मुरज जंघेल ने, बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम और योगेश्वर साहू ने, रायपुर से भारती और वरुण राठौड़ ने, पोटिया कला दुर्ग से संजय और सुजाता साहू ने और रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू ने।
1: सुनील सोनी जी हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गायक कलाकार हैं सौम्या जी,
0: जी
1: जिनकी आवाज में वर्षों से मधुर गीत इन फिजाओं में गूंज रहे हैं और ऐसे कलाकार को इनसे मिले कार्यक्रम के माध्यम से सुनना और उनकी संगीत यात्रा के बारे में जानना हमारे सभी श्रोताओं के लिए बड़ा ही रोमांचक अनुभव रहा होगा। तो इस भेंटवार्ता को आप सभी ने बहुत गौर से सुना, इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गांव तेंदु भाटा मगलोड से उमेन कुमार निषाद और देविका निषाद लिखते हैं, लोक संगीत के कार्यक्रम में 27 जून को सुबह के समय विदुषी ममता चंद्राकर और साथी कलाकार मन के गाय छत्तीसगढ़ी गीत सुनेन बड़ मनभावन लागिस। ये दिन लोक संगीत कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ी गीत के मनमोहक प्रस्तुति भर अंतस्ले धन्यवाद।
1: लोक संगीत के माध्यम से अंचल के बहुत सारे कलाकारों की आवाजें हर रोज आकाशवाणी से गूंजती हैं और इन आवाज़ों को सुनकर हमारे श्रोता खासकर पुराने दिनों की सुनहरी यादों में भी खो जाते हैं। तो मधुर संगीत की ये सरिता यूं ही सतत रूप से बहती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल और शकुन जंघेल लिखते हैं, दीपक जी 27 तारीख के गाथा झरोके से भाग 5 सुने पर मिलिस, मर्यादा के रक्षा के लिए रणचंडी बन जाने वाले बहादुर कलारिन जेकर लेखक परदेशी राम वर्मा, वाचन स्वर प्रदीप चक्रवर्ती और शीतला शुक्ला, प्रस्तुति मोहन सिंह रामानी। कार्यक्रम में बहादुर कलारिन के कहनी के संग बांस गीत में सुने बर मिलिस हवे। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगिस, बने प्रस्तुति पर जम्मो पात्र मल्ला बोझा कल्ले बधाई।
1: गाथा झरोखे से का पुनः प्रसारण हो रहा है और इसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का एक अभिन्न अंग है गाथा गायन। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, जिसे आप सुन रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: रतन जैन कोकिला जैन रायपुर से लिखते हैं, कार्यक्रम बातों बातों में 27 जून को सुना, विषय था 1 जुलाई से लागू होने वाली VBG RAMG योजना, प्रस्तुति विकल्प शुक्ला की थी, पहुना थे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा। श्री शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 1 सप्ताह में रोजगार देने की गारंटी दी जाती है ताकि लोगों का पलायन ना हो। इसमें ग्राम सभा के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है। ये विकसित भारत को संकल्प के धरातल पर उतारने की योजना है। उपयोगी और सार्थक इस भेंटवार्ता के लिए आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद।
1: केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जो एक नए स्वरूप के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और आकाशवाणी के माध्यम से ये जानकारी हम अपने सभी सुधी श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका लाभ आप सभी उठाते रहेंगे, यही हम कामना करते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: मेगा पारा चिल्फी से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल लिखते हैं, 25 जून को चिंतन सुनने को मिला, आलेख श्री अंशुधर द्विवेदी जी का था, यातायात से भरी जानकारी दी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी।
1: चिंतन में हर रोज अलग अलग विषयों पर मंथन किया जाता है और बहुत सी जानकारियां भी शामिल होती हैं सौम्या जी, जिसे आप सुन रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: धरसीवा से छेदू यादव और सीता यादव जी लिखते हैं, 27 जून को डॉक्टर की सलाह में योग और ध्यान के बारे में डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी ने योग करने से क्या लाभ है विस्तार से उन्होंने बताया। उम्र चाहे जो भी हो, निरोग और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी, जिसके लिए राठौर जी और भेंटकर्ता रमाशंकर जी को बधाई। और इसी कार्यक्रम को पसंद किया है नवगढ़ कटी से नारायण प्रसाद और चंद्रकांत वर्मा जी ने।
1: 21 जून को पूरे देश में योग दिवस मनाया गया सौम्या जी,
0: जी।
1: और योग दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि योग को हम किसी एक दिन के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन अपने जीवन से जोड़े, यही संदेश इस भेंटवार्ता के माध्यम से दिया गया। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: बठेना पाटन से बलकरण वर्मा और ज्योति वर्मा लिखते हैं,

0: 28 जून को कृषि चर्चा कार्यक्रम में जानकारी सुनी। विषय था धान में खरपतवार नियंत्रण। जानकारी देने वाले विशेषज्ञ थे मनीष कुमार वर्मा। खरपतवार नाशी की मात्रा, नमी, चौड़ा पत्ता, सकरी पत्ती, खेत की सफाई जैसे विषयों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक जानकारी उन्होंने दी। खेती मौसम में किसानों के लिए ये जानकारी बहुत लाभदायक होगी। सफल जानकारी देने के लिए हार्दिक बधाई।
1: कृषि चर्चा के माध्यम से हमारे किसान भाइयों का ज्ञान आधुनिक कृषि के हिसाब से बढ़ता रहे, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता लिखते हैं, 28 जून को हमें मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुनने को मिली, जिसमें हमें कोलकाता में भारतीय नौसेना स्वदेशी विमान बनाया जा रहा है और हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री ज्योति सुरक्षा बीमा दुर्घटना बीमा के बारे में, हर गीला पक्षी जिसे लोग अंधविश्वास मानते थे उनके संरक्षण में लोग आगे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज फुटबॉल के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में गणेश प्रतिमा जो मिट्टी की बनी हो वही खरीदें, ऐसे बहुत से विषय उन्होंने बताए।
1: माह के अंतिम रविवार को मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन विचारों के साथ राष्ट्र को संबोधित करते हैं सौम्या जी, उन विचारों में हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत सारी नई नई जानकारियां होती हैं जिससे हम सबका ज्ञान भी बढ़ता है और आगे भी ये प्रसारण यूं ही आप तक पहुंचता रहेगा। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह लिखते हैं, 28 जून को सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत मेहदी हसन की गाई गजलें बहुत अच्छी लगी।
1: सुगम संगीत हो या लोक संगीत, संगीत हमारे घर आंगन को नई ताजगी प्रदान करता है, जीवन को रोचक बनाता है। यूं ही सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 29 जून को प्रसारित कार्यक्रम दहलीज में विजय लक्ष्मी तिवारी से किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर दीपक हटवार जी ने सार्थक भेंटवार्ता की। चर्चा में विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार किशोर वर्ग धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ जाता है, इसके पीछे के सामाजिक और पारिवारिक कारण क्या हैं और उन्हें इस बुरी लत से बाहर निकालने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए। भेंटवार्ता में विशेष रूप से माता पिता और अभिभावकों के दायित्वों पर प्रकाश डाला गया। ये संदेश दिया गया कि बच्चों के साथ संवाद, उनका मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम ने ये भी रेखांकित किया कि आज का युवा वर्ग यदि नशे की ओर बढ़ता है तो ये समाज और राष्ट्र दोनों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रत्येक नागरिक को जागरूक होकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये भेंटवार्ता अत्यंत प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जन जागरूकता बढ़ाने वाली रही। ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आकाशवाणी रायपुर परिवार साधुवाद का पात्र है।
1: दहलीज के इस अंक में किशोरों को नशे से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विजय लक्ष्मी तिवारी जी ने दी सौम्या जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता अपने घरों में और अपने आसपास किशोरों को इस बुराई से दूर रखने के लिए सदैव सजग रहेंगे। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: ग्राम दहिहान बांधा बाजार से रेवाराम साहू और कुमारी देवी साहू लिखते हैं, 22 जून के हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाओ कार्यक्रम मां श्रोता मल्ले सुघर गोट बात करिस और ओकर मन के मन पसंद छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाइस, गीत ला सुन के हमर मन मंजूर झूमे लागिस। ये कर सफल प्रस्तुति बर तारकेश्वरी आसुदानी जी और गीत संकलन बर बीर भान साहू जी ला हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है टेकापार बालों से चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव ने। गंडे पंडरिया से शिवा यादव और राज यादव लिखते हैं, दीपक जी 24 जून को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ को लेकर आए शशांक खरे जी, जिसमें सभी श्रोताओं के ईमेल को शामिल किया गया। ऐसी मनमोहक और आकर्षक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और इसी कार्यक्रम को पसंद किया लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमल कांत और प्रमिला मरावी ने, गंडे टिकरीपारा से जागेश्वर और कचरीबाई देवांगन ने, भीमखोज तरपोंगी से संतोष और होमेश गुप्ता ने, दहियान बाजार से

0: रविंद्र और हीरेंद्र साहू ने, आवरा डबरी से श्यामलाल और मोगरा साहू ने और सैया मालगी से सुखनंदन और शिवरानी चंद्रवंशी ने, कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं। 25 जून के ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनाएं, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए प्रवीणा त्रिपाठी जी और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम भड़ोका कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी और राजकुमारी मरावी लिखते हैं। 26 जून के छत्तीसगढ़ी फरमाइशी सुर सिंगार कार्यक्रम में हमर मयारू दीदी तारकेश्वरी जी श्रोता संगवारी मल्ले भेजे गए ईमेल पाती और नाम शामिल कर बहुत सुघर सुघर गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला हमर कोरी कोरी बधाई। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है गणेश धाम परसोली से जितेंद्र दास और मिलवदास मानिकपुरी ने, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार और योगेश साहू ने, लोरमी ग्राम करुआ नार से गोमती रजक और काजल रजक लिखते हैं। 27 जून को फिल्मी फरमाइशी आपकी मीति गीत कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनाएं, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए शुभ्रा ठाकुर और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को पसंद किया है फुलजर घटा रानी से यामिनी और मुस्कान साहू ने और पिपरिया से कमलकांत और दीपा रिमझिम गुप्ता ने, गांव तेंदुभाटा मगरलोड से यशस्वी कुमार निषाद और सुरेंद्र निषाद लिखते हैं दीपक जी। 28 जून को फोन इन फरमाइश कार्यक्रम को हमर मयारू दीदी तारकेश्वरी दीदी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, श्रोता संगवारी मन संग फोन में बातचीत और उनके पसंद के गीत सुने बहुत बढ़िया लगा ये दिन का कार्यक्रम, अच्छी प्रस्तुति के लिए हृदय से धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को पसंद किया है गंडे टिकरीपारा से दीपक कुमार और जयश्री देवांगन ने।
1: सौम्या जी, देखिए कितने सारे हमारे श्रोता साथी हैं
0: जी,
1: जिन्होंने अलग अलग दिनों में प्रसारित फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में इतने सारे ईमेल भेजे हैं। तो भाई, समय की कमी को देखते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि आपकी ये भावनाएं इन पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंची और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी बधाइयां हम पहुंचा रहे हैं। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलने से पहले हम ईमेल आईडी बता दें, raiapkepatra1@gmail.com। पोस्टकार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 4920001। तो अगले हफ्ते आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक
0: और सौम्या को नमस्कार।

आपके पत्र। अभी आप सुन रहे थे श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में लीजिए सुनिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों का अगला भाग।
1: मैंने यहाँ इस बात का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि मैं भी ब्रिटिश प्रजासत्ता पर विश्वास रखता हूँ, जो कि मैं नहीं रखता, पर यह दिखाने के लिए कि वे अंग्रेज जाति के प्रति घृणा का भाव नहीं रखते थे। पर वह भारत और साम्राज्य की अवस्था को इसी पिछड़ी अवस्था में न तो रखना ही चाहते थे और न रख सकते थे। वे चाहते थे कि शीघ्र ही भारत से समानता का भाव रखा जाए और इसे वह देश का जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो लड़ाई की उसमें सरकार को छोड़ नहीं दिया। स्वतंत्रता के इस युद्ध में उन्होंने न तो किसी की मुरव्वत की और न किसी की प्रतीक्षा ही की। मुझे आशा है अंग्रेज लोग उस महापुरुष को पहचानेंगे जिनकी भारत पूजा करता था। भारत की भावी संतति के हृदय में भी यही भाव बना रहेगा कि लोकमान्य नवीन भारत के बनाने वाले थे। वह तिलक महाराज का स्मरण यह कहकर करेंगे कि एक पुरुष था जो हमारे लिए ही जन्मा और हमारे लिए ही मरा। ऐसे महापुरुष को मरना कहना ईश्वर की निंदा करना है। उनका स्थायी तत्व सदा के लिए हम लोगों में व्याप्त हो गया। आओ हम भारत के एकमात्र लोकमान्य का अविनाशी स्मारक अपने जीवन में उनके साहस, उनकी सरलता, उनके आश्चर्यजनक उद्योग और उनकी स्वदेश भक्ति को सीखकर बनावें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं स्वर्गीय देशभक्त के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से उसका इससे अच्छा तरीका दूसरा नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कि उनके जीवन की भांति उनकी मृत्यु ने देश की नसों में नई शक्ति प्रवाहित की है। अगर आप मेरी तरह उनकी शव यात्रा के जुलूस में शामिल हुए हों तो आप मेरे इन शब्दों का अर्थ समझ सकेंगे।

तिलक अपने देश के लिए जीवित रहे। अपने देश की स्वतंत्रता, जिसे उन्होंने स्वराज्य कहा, उनके जीवन की प्रेरणा थी। उनकी मृत्युशैया की प्रेरणा भी देश की स्वतंत्रता ही थी। उसी के कारण उनका देशवासियों पर इतना असाधारण प्रभाव था। उसके कारण उनको समाज के उच्च स्तरीय कुछ मुट्ठी भर भारतीयों की ही नहीं, बल्कि लाखों देशवासियों की सराहना प्राप्त हुई। उनका जीवन आत्मत्याग की एक निरंतर कहानी है। उन्होंने सन 1879 में अनुशासन और आत्मत्याग का जीवन आरंभ किया और अपने अंतिम दिन तक उसे जारी रखा, और यही उनकी लोकप्रियता का रहस्य है। वे केवल यही नहीं जानते थे कि उनके देश को किस बात की जरूरत है, बल्कि वह यह भी जानते थे कि अपने देश के लिए किस प्रकार जीना और किस प्रकार मरना होता है। मैं आशा करता हूं कि इस विशाल जन समुदाय के सामने आज मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसके फलस्वरूप वही आत्मत्याग की भावना उत्पन्न होगी, जिसकी गवाही लोकमान्य तिलक महाराज का जीवन देता है। उनके जीवन से अगर हमको कोई शिक्षा मिलती है, तो वह सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अगर हम अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो भाषणों से नहीं कर सकते, चाहे वह कितने ही भव्य और उद्बोधक क्यों न हो, बल्कि हर शब्द के पीछे और अपने जीवन के हर काम के पीछे त्याग के द्वारा ही हम कुछ कर सकते हैं। लोकमान्य तो एक ही थे,

श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। ये विचार श्रृंखला आगामी अंकों में भी जारी रहेगी।

गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर के थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम सुनेगा रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

खयाम के संगीत निर्देशन में ये था साहिर का लिखा गीत। फिल्म त्रिशूल के लिए आवाज दी थी नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

अलका याज्ञिक और कुमार सानू को, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत अन्नू मलिक का, और फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम।

0: अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था अलका याज्ञिक और कुमार सानू ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीब और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में सावन कुमार का लिखा गीत। फिल्म लैला के लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने।

0: मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर को भी आपने सुना फिल्म लैला में। शब्द रचना सावन कुमार की थी और धुन बनाई थी उषा खन्ना ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, और फिल्म का नाम है मरते दम तक।

मरते दम तक, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में 10:30 पर चित्रपट संगीत का पुनः आनंद ले सकेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मनोज वर्मा, आपके साथ संगतकार हैं तबले पर अशोक कुर्म, हारमोनियम पर सौरभ महतो। तो पहले सुनिए राजेश्वर की ये रचना।

सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मनोज वर्मा को। आइए अब सुनते हैं कतील शिफाई का ये कलाम।

0: सुगम संगीत इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मनोज वर्मा को। संगीतकार थे तबले पर अशोक कुर्म और हारमोनियम पर सौरभ महतो। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देश भर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रुपए की कमी की गई। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026-27 के बजट में 4000

करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कल 2 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यवसाय के एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यवसाय के एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किश्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। इससे नए सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, लंबित प्रकरणों के निराकरण, प्रभार व्यवस्था, पुलिस सत्यापन और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है VBG रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यवसाय के एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रुपये की कमी की गई और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बिजोली पंडा का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और गत। विलंबित और द्रुत दोनों ही गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। आपके साथ तबले पर संगति की है विद्यानाथ सिंह ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बिजोली पंडा का सितार पर बजाया राग नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगति की विद्यानाथ सिंह ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनिएगा सुबह 11:05 पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार और सपना मुखर्जी को फिल्म जाबाज में बोल इंदवर के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: किशोर कुमार और सपना मुखर्जी को अभी आपने सुना फिल्म जाबाज में। शब्द रचना इंदिवर की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर। बड़ी दूर।

0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है, कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए।

आइए अब सुनते हैं MM करीम के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत फिल्म सैक लिए स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने।

अलका याज्ञिक और उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म साया में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी MM करीम ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और FM बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए सुनिए एक सूचना। आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी बुवाई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482400384 4003483400383 और 4003484400384। रायपुर का स्टडी कोड है 07710771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को शाम 7:30 बजे किया जाएगा। हमें आपकी फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में ये था अनजान का लिखा गीत। फिल्म जानकी बाजी के लिए स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और एस जानकी ने।

आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म सरगम के लिए स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना फिल्म सरगम में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं अलका याज्ञिक और उदित नारायण को। बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का और फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

0: दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था अलका याज्ञिक और उदित नारायण ने, शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इसे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगे। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित

0: होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर को लाभ होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रसारण। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।

संगी हो ये कार्यक्रम में सबले पहली हम सुनथन राम नारायण ध्रुव और संगवारी मन के स्वर में गीत और ये गीतला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठोए हैं तिलकपुरी लोरमीले चंद्र कुमार मरावी चंद्रेश कुमार मरावी मालती मरावी मयंक मरावी हटौत बाजार कमल नाथ पटेल राकेश पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल चिरमिरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सरोहदर दरसीमाले छेदुलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा और अल्पना यादव इन्हें हमारे संगवारी हैं रानी

खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैसी, सिंगवाली लवकु सेन, सविता जैन, प्रदीप जैन और रमेश यादव। तो आवो जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन राम नारायण ध्रुव और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

राम नारायण ध्रुव और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनो। आवाओ अब सुनथन श्यामदास मानिकपुरी और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठो है पोटिया कला ले संजय साहू सुजाता शशांक साहू सीमा साहू अड़ा नानघाट ले माखन वर्मा चांदनी वर्मा वराड़ा अम्बाला ले रवि कुमार रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकिरत गुरुशब्द सिंह राहुल मदनपुर ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू और राहुल साहू पथरिया भरेवाले चंदूलाल सिंगरोल नारायणी सिंगरोल नोमेश सिंगरोल नेहा और वान्या सिंगरोल बन बघेरा ले योगेश सारवा आशा सारवा नीरज नीलेश अंजलि सारवा रूसनी सारवा गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू राकेश साहू मानवेंद्र साहू बम्बूडीह बावन केरली चंद्रकांत महिलांग डिगेश महिलांग और रमाकांत महिलांग पदुमनगर भिलाई ले दिनेश देवांगन भागशी देवांगन पुष्कर देवांगन और वंशिका देवांगन छिरा बेमेतरा ले दिलीप जायसवाल दिलेश्वर जायसवाल दीपक विभू चित्रांश

او देवांश जायसवाल, अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान। आओ आप जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन श्यामदास मानिकपुरी और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

श्यामदास मानिकपुरी और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी की सुनो, ये कार्यक्रम आप मन सुनो थो मीडियम वेव और एफएम बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगा

कर आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: संगी हो कार्यक्रम का अगला गीत भगत साहू और संगवारी मन के स्वर में। ये गीतला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठवे हैं रसेड़ली मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति और डिगेश साहू, नारायणपुरले दिनेश्वरी बंजारे, मनीष बंजारे, सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंदा साहू, भाटापारा ले हमारू संगवारी हैं बचकमल, डॉक्टर बसंत भिगु, विनय ठाकुर और मोतीलाल, भाटापारा ले और संगवारी हैं राम कुमार सेन, विक्की सेन, दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत, पुनियाबाई, नारायण यदु, दुलारीबाई, चुवाराम वर्मा, घटारानी फुलझरली, योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू, हर्षिता साहू, नयन साहू, पूर्वी साहू, ग्राम दहान बांधा बजाल ली हरिओम साहू, रेवा राम साहू, रानू साहू, सरस्वती साहू, प्यारे राम साहू, परमानंद साहू, इहेसले हमारा संगवारी है कुमारी देवी साहू, पार्वती देवी साहू, ज्योति रानी साहू, सृष्टि साहू, कोमेन साहू, हिरेन साहू, रूपल साहू, जगोतीन बाई साहू, रुआ माधा सनिचरी बाजार ली सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ और सुबम जैन, इहेले हमारा संगवारी है श्रेया जैन। ग्राम सीता कसा उमर वाहिली कुबेर सिंह साहू, सरस्वती साहू, शेर सिंह साहू और उर्मिला देवी साहू। तो आवो आप जम्मू जन के फरमाइश में सुनथन भगत साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

भगत साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनो। आवाओ अब सुनथन कृष्ण कुमार पाटिल और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठवाए हैं कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविन्द्र रौनक, यहीं ले हमारे संगवारी हैं दरियानमल मोटवानी, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, लक्षणपुर ले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू, रोहासी ले मुकेश कुमार, नंदनी मनीष मयंक साहू, जानकी साहू, तिलदा ले हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला, निजामाबाद आंध्र प्रदेश ले वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी। तो आवाओ आप जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन कृष्ण कुमार पाटिल और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

कृष्ण कुमार पाटिल और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवो अब सुनथन सुखनंदन लाल शिव के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठवे हैं देवरीले गन्नूलाल रजक, फानेश्वर उमेश रजक, वड़िंग खेड़ाली, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, पटेल नगर मलोटले डॉक्टर रमेश जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू औ गुड्डू जाजूरिया, ग्राम पहराली पोषण बंछूर, चंद्रकिरण बंछूर, सहा मालगीले आकाश कुमार चंद्रवंशी, सुखनंदन लाल चंद्रवंशी, लोहारी डीहली अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत अवनिशान साहू, महादेवघाट अमलेश्वरली डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, दत्रेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेन्द्र कुमार वर्मा, पिपरियाली कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता,

रुद्री धमतरीले चन्द्रकान्त सीमा साहू, सूर्यकान्त राकेश साहू, शुभम शिखा शेफाली साहू। आव आप जम्मूझन के फरमाइश में सुनथन सुखरंदन लाल शिव के स्वर में ये गीत।

सुखनंदन लाल शिव के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवाओ अब सुनथन लता खापरडे और नारायण गिर के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठवा है ग्राम भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन, कुरासी भैंसा ले।

पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, चिलफिल्ली रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, टेकलाल पटेल, अरण पिथौरली, कौतुक पटेल, काजल पटेल, पायल पटेल, गौरी पटेल, यह ले हमारे संगवारी हैं अमर सिंह पटेल, जयराम पटेल, पिथौरले एफ एनंद, बिलाईगढ़ले रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, यहाँ ले हमारे संगवारी हैं खीक राम देवांगन, धर्मेंद्र देवांगन, मलाजखंड डोंगरियाली, मुन्ना लाल पटले, माधुरी पटले, याचना पटले, दीपांशु पटले, अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुदानी केवट, कृष्णा केवट, भिलाई ले डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, पुतकी कला ले राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सोमांशु पांडे, भाग्यलक्ष्मी पांडे, गुनगुन पांडे, महासमुंद ले भीषम दास मणिकपुरी, नर्मदा हिरमानी, दीपक दास मणिपुरी, महासमुंद सालेभाटा ले जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण, दिव्यांशी और खेमु ध्रुव, हिच्छा ले अदालत दास वैष्णव, मानस दास वैष्णव, सतीश रिचा गायत्री वैष्णव और खट्टी महासमुंद ले छाया शर्मा, सुभाष शर्मा, गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन, कचरी देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ रिचा देवांगन, दामापुर बाजार ले भोज कुमार बंजारे, लक्ष्मी बंजारे, दीपक और दीपिका बंजारे। तो आवो आप जम्मू जन के फरमाइश में सुनथन लता खापरडे और नारायण गिर के स्वर में ये गीत।

लता खापर्डे और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनो। कार्यक्रम के अगला गीत पंचराम मिर्झा और कुलवंतिन बाई के स्वर में। ये गीतला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठोए हैं भैंसा मुंडीले पूजा तुलेन साहू पूर्वांशी साहू भागवत साहू कुमारी साहू बेमेतरले भरतलाल सिन्हा लव कुमार सिन्हा लक्की सिन्हा पलारीले प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल वर्मा यशस्वी वर्मा चचेड़ीले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी रायपुरले हीरा साहू तुषार देवांगन भूपेश देवांगन मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन विनोद वंडलकर वीणा वंडलकर विविधा वंडलकर इहले हम औ संगवारी हैं कमल लखानी रवीना लखानी राकेश डिंगवानी मनोहर डिंगवानी नेवई उतैले विक्की देवांगन उर्वशी जैन जतिन कोनिका देवांगन भूत कछा लूरमिली दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक और प्रीतम धनराज। तो अब आप जम्मू झन के फरमाइश मसुन थन पंचराम मिर्झा और कुलवंतिन बाई के स्वर में ये गीत।

पंचराम मिर्झा और कुलवंतिन बाई के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। कार्यक्रम के अगला गीत ला स्वर दे है सुरेंद्र सिन्हा और संजना चतुर्वेदी मन और ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठो है सहतपुरले सतीबाई साहू उर्वशी साहू माही अंशु दामिनी पार्वती सरोज साहू इहले दुर्गेश कुमार साहू रामकिशन छोटकू साहू लोकेश साहू दुलीचंद साहू मोहित और सत्यम साहू रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्रलेखा साहू शुभम सेजल साहू छचान पहाड़ी अंबागढ़ चौकी ले रधन राम साहू गायत्री बाई साहू ओम प्रकाश साहू हेमिन साहू भीम खोज तरपोंगी ले संतोष गुप्ता हितेश होमेश शीतल लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू मोंगरा संगीता केसरी चिंकी साहू भदरसी ले पन्नालाल सेन तारासेन खुशबू सेन चर डोंगरी ले दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू कुमारी साहू इंद्राणी माया साहू जयकिशन साहू योगेश साहू वासु साहू हेमा साहू राधिका साहू धमतरी ले रामचंद माखीजा सविता माखीजा स्वाति माखीजा किरत राय वाधवानी दीपक घनसानी प्रदीप कुमार साहू माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवानी संतोष ध्रुवंशी मास्टर शानु ध्रुवंशी। तो आओ आप चमूझन के फरमाइश में सुनथन सुरेंद्र सिन्हा और संजना चतुर्वेदी के स्वर में ये गीत।

0: संजना चतुर्वेदी और सुरेंद्र सिन्हा के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। संगी हो एकरे संग एक कार्यक्रम यह सिरावत है और अब अपन संगवारी ससांग खरले दो आ गया। ये कार्यक्रम बर गीत जोड़े रहीन है बीर भान साहू। आप जम्मो झल्ला हमर जय जोहार। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। हमारा यह साप्ताहिक प्रसारण अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई दरें आज से लागू हो गई हैं और बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किए गए हैं। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट,

ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि 16 जून को नौगई निवासी भरत उर्फ लाला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, जीपीएम, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जगदलपुर जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्य जीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, डब्ल्यूसीसीबी, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो बाघों के खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के ठिकाने से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई बिजली की दरें आज से लागू हो गई हैं। और बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।

0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी।
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी।
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से

0: सुन लीजिए,
1: सोने को स्टारडस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी।
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा।

0: आपने अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर

0: कर में मिलती हैं और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह, ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा

0: तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
1: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
1: मैं बोलो। अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हमी में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, करो।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी, मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या?

ये लगता है कोई कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा। मैं वो पेड़ आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए। हाँ, शायद मेरी आंखें खोल

कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। पहले सुनिए भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में आलोक रंजन झा की ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक बजने को है, आइए हिंदी में समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में

0: राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

जोश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अभिजीत की आवाज़ में। गीत समीर का था, संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है पापा कहते।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में परवरिश फिल्म का गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आसपास फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में दोपहर के 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। महाभारत की शकुंतला ये नाटक सुनिएगा अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर। इस नाटक के लेखक और निर्देशक हैं श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल के अलावा होगा क्रम पत्र मिला और यादें।

शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे मनोज वर्मा को।

किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर होगा आज की बात। इसमें होगा चिट्ठी मिली ये पत्रोत्तर कार्यक्रम और आज की सलाह में जैव उर्वरक अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर सलाह देंगी दीपमाला लकड़ा, विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा बिजोली पांडा का सितार पर बजाया राग किरवानी। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:00, 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, चौपाल में शाम 7:21 पर होगा आज की बात में पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस, और किसान वाणी में आज की सलाह में जैव उर्वरक अपनाएं

बता दें चौपाल में शाम 7:21 पर होगा आज की बात में पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस और किसान वाणी में आज की सलाह में जैव उर्वरक अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। इस विषय पर सलाह देंगी दीपमाला लकड़ा, विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। महाभारत की शकुंतला, लीजिए सुनिए ये नाटक। लेखक और निर्देशक हैं श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा।

0: अरे प्रिया, तू कब आई? तू मेरी जान, आज तो बहुत देर से गई थी, पर हमारी शकुंतले तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी।
1: अरे नहीं रे, दरअसल ये गीत चढ़ ही गया है मेरी जुबान पर।
0: सिर्फ जुबान पर ही चढ़ गया है या मन से भी बन गया हमारी बन्नों के?
1: प्रिया तू तो बस,
0: खैर अगर सिर्फ गीत ही बंधा है मन से तो ठीक है, पर अगर कैसे लजाती है? तेरा लजाना देखकर लगता है तू अभिनेत्री शकुन नहीं है।
1: तो क्या हूँ मैं?
0: एक लड़की 17-18 की, जिसके जीवन में अभी अभी कोई मीठा सा सपना बनकर उभरा है।
1: देख प्रिया की बच्ची,
0: अब बन मत, हमें भी सब पता है।
1: क्या पता है तुझे?
0: वही
1: वही क्या, बता ना जल्दी।
0: अरे अरे बताती हूँ, कहाँ बता, ये चूटी क्यों काट रही है?
1: जल्दी बताती
0: हूँ ना, छोड़ ना यार, लगता है।
1: फिर बताती क्यों नहीं जल्दी, क्या पता है तुझे?
0: यही कि मेरी बन्नो तो न सिर्फ अच्छा अभिनय कर लेती है, गुनगुना भी लेती है अच्छा। सच ना, थोड़ा सा गुनगुनाना वही गीत।
1: अरे छोड़ ना, क्यों बोर करती है फालतू।
0: हाँ भाई, हम कोई ग्रेट हीरो दुषी कुमार थोड़ी ही है, ये प्रिया तो एक छोटी सी बंदी है, छोटे मोटे रोल वाली।
1: प्रिया रुट गई इतनी जल्दी? अरे तू तो मेरी सबसे पक्की सहेली है, ये फिल्म नाटक सबसे अलग।
0: फिर बता सच सच।
1: क्या बताऊं तुझे?
0: वही गीत के बारे में।
1: गीत? सच प्रिया, ये गीत तो फिल्म से अलग उतर ही गया मेरे दिल की गहराइयों में। दुषी कुमार जी कितने बड़े हीरो हैं, पर सच जान घमंड का नाम तक नहीं। मैं तो घबरा ही रही थी शकुंतला के रोल में।
2: सब ठीक आ गया अब्दुल? देखा उधर।

0: कहते हो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए वहां पे। हाँ थोड़ा और हटाओ थोड़ा, हाँ देखो तुम यहाँ ट्रॉली खींचो और
1: मेरे मित्र सच बताओ क्या आज तुमने सच में निज्ञा विहारी सम्राट दुष्यंत के दर्शन किए थे? उस दुष्ट भ्रमर से इस ऋषि कन्या शकुंतला की रक्षा सच स्वयं सम्राट ने की थी? पर मेरे हृदय तुम्हें क्या होता जाता है दुष्यंत की कल्पना मात्र से। एक बार फिर मेरे नेत्रों सच बताओ क्या आज तुमने सच में मृग्या विहारी सम्राट दुष्यंत के दर्शन किए थे? उस दुष्ट भ्रमर से इस ऋषि कन्या शकुंतला की रक्षा सच स्वयं सम्राट ने की थी? पर मेरे हृदय तुम्हें क्या होता जाता है दुष्यंत की कल्पना मात्र से। ठीक नहीं बन रहा, बस एक बार और। मेरे नेत्रों सच बताओ क्या आज तुमने सच में मृग्या विहारी सम्राट दुष्यंत के दर्शन किए थे? उस दुष्ट भ्रमर से इस ऋषि कन्या शकुंतला की रक्षा सच स्वयं सम्राट ने की थी? पर मेरे हृदय तुम्हें क्या होता जाता है दुष्यंत की कल्पना मात्र से। बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा, उधर डायरेक्टर दास जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, क्या करूं?
2: कहिए शकुन जी क्या हो रहा है यहाँ?
1: अरे आप दुषिक कुमार जी,
2: क्यों भाई कुछ गलती हो गई? डिस्टर्ब कर दिया मैंने?
1: अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो दरअसल।
2: आखिर बात क्या है, डायलॉग्स नहीं जम रहे हैं क्या?
1: हाँ देखिए ना कितने बड़े बड़े शब्द डाल दिए हैं, मृग्या बिहारी भ्रमर।
2: अरे आप जैसी सुंदर कन्या की कहानी होगी तो बड़ी बातें तो होंगी ही।
1: मेरी कहानी?
2: हाँ हाँ शकुंतला की कहानी। चलो मैं कराता हूँ तुम्हें रिहर्सल।
1: आप? आप कराएंगे रिहर्सल मुझे?
2: क्यों इस लायक नहीं समझती हो मुझे?
1: अरे नहीं नहीं ये आप।
2: तो फिर रेडी?
1: रेडी।
2: ओके चलिए शकुन जी एक बार डायलॉग बोलिए अपने।
1: आप बोल के बताइए ना।
2: अरे आप शुरू तो कीजिए फिर मैं तो हूं ही आपके साथ, कहिए।
1: मेरे नेत्र सच बताओ क्या आज तुमने सच में मृग्या विहारी सम्राट दुष्यंत के ही दर्शन किए थे?
2: नहीं नहीं ये जरा फ्लैट हो गया, देखो मैं बताता हूं। मेरे नेत्रों सच बताओ क्या आज तुमने सच में मृग्या विहारी सम्राट दुष्यंत के ही दर्शन किए थे? समझ गए ना, ऐसे बोलो कमान। हाँ हाँ रेडी। अरे नर्वस होने की कौन सी बात है? हाँ बोलो।
1: मेरे नेत्र सच बताओ क्या आज तुमने सच में मृग्या विहारी सम्राट नहीं बनता?
2: अरे रे, फिर से ट्राई करो, आएगा एक बार में थोड़ी आता है, कमान। रेडी।
1: मेरे नेत्र सच बताओ क्या आज तुमने सच में मृग्या विहारी सम्राट दुष्यंत के ही दर्शन किए थे?
2: वेरी गुड। हाँ, आगे।
1: उस दुष्ट भ्रमर से इस ऋषि कन्या शकुंतला की रक्षा सच स्वयं सम्राट ने की थी?
2: नहीं नहीं जरा और इमोशन लाओ उसमें, फिर से बोलो।
1: हाँ बोल के बताइए ना।
2: अच्छा अच्छा उस दुष्ट भ्रमर से इस ऋषि कन्या शकुंतला की रक्षा
1: पता ही नहीं चला सम्राट ने। ये मेरी पहली फिल्म है, नाटक तो कई किए थे पर दुषी जी के साथ फिल्म की कुछ बात ही और है। सच वो तो इसी मीठे गीत से छा गए मेरे जीवन में। प्रिया जरा देख तो कौन है? अरे होगा कौन, वही होगा तुम्हारा दुषी। हेलो जी हाँ शकुन जी के यहाँ से बोल रही हूँ। कौन? नमस्कार मैं प्रिया बोल रही हूँ। नहीं शकुन जी है ना यहाँ जी? कितने बजे? अच्छा हम पहुँच रहे हैं अभी जी। नमस्ते। कौन था? अरे वही फिल्म राइटर डायरेक्टर मिस्टर।

0: असलम शकुन मेम साहब।
1: हाँ दास साहब कहाँ है?
0: अंदर है, अंदर चलिए, दूसरी साहब भी है। इधर से आइए प्रिया जी।
2: सारथी, ये काला हरिण तो हमें बहुत दूर खींच रहा है। मृगया का आनंद इसी में है, लगता है मानो आकाश में ही उड़ा जा रहा है ये।
3: आप चिंता न करें महाराज, ये अश्व भी महाराज दुष्यंत के अश्व हैं, अभी हरिण को पराजित कर देंगे।
2: सत्य है, ये मेरे अश्व हैं। सूर्य और इंद्र के अश्व को भी पराजित कर दे अवसर मिले तो। बस अब तो वो रहा हरिण और ये मेरा बाण।
0: सावधान, ये कल ऋषि के आश्रम का हरिण है, उसे मारना मत।
3: महाराज ये तो किसी तपस्वी की पुकार है।
2: तो रथ रोक लो उसके निकट।
4: पूर्ववंशी चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत की जय हो।
2: प्रणाम तपस्वी, आपका परिचय?
4: मैं कर्ण ऋषि के आश्रम का तपस्वी हूँ। सम्राट इस हरिण पर बाण मत चलाइएगा, ये कर्ण कन्या शकुंतला का पालित हरिण है।
2: कर्ण ऋषि तो क्या मैं उनकी तपोभूमि में हूँ?
4: हाँ सम्राट, ये उनका ही तपोवन है।
2: मेरा सौभाग्य। तपस्वी, क्या आचार्य के दर्शन संभव हैं?
4: वे तो गृह शांति हेतु सोम तीर्थ गए हुए हैं, पर आप चिंता ना करें, अतिथि सेवा का भार वे अपनी पुत्री शकुंतला को सौंप गए हैं। आप तनिक रथ से उतरकर वंशी के सौंदर्य का आनंद तो लीजिए।
2: सच, बहुत सुंदर वन है।
4: ये तपोवन का सौंदर्य है महाराज। अच्छा आप आनंद लीजिए, मैं ये समीथाएं आश्रम पहुंचा दूं, वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी।
2: जी हाँ आप चलिए। सच, कहां वज्र से कठोर वाण और कहां वो सुंदर सुकोमल हरिण। नौ पल्लवों में खेलते ये पंछी कितने सुंदर लगते हैं, है ना सारथी?
3: जी हाँ महाराज।
2: अच्छा ऐसा करो, तुम अश्वों को यहीं रुक कर विश्राम दो, हम पैदल ही वन विहार करेंगे।
3: जो आज्ञा महाराज।
2: ये धनुष वाण और आभूषण मुकुट भी रख लो अपने पास, हम ऐसे ही चलते हैं आश्रम की ओर।
3: जो आज्ञा।

0: कितना सुगंध है, कितना मन है। अरे ये कौन आ रही है, जरा ओट में से देखता हूँ।
1: इतना नच्छट है ये मृक्ष ना, अपनी माँ के पास तो जाता ही नहीं। पालू आज सुबह क्या हुआ,
2: सुन रही है सखी अनुसुईया?
1: क्या हुआ? रात्रि का अंतिम प्रहर ही था, जाने कहाँ से आकर मेरा पैर चाटने लगा।
2: अरे ये शकुंतला के सुकोमल चरण थे, जाने उस छोने का क्या हुआ होगा। क्यों प्रिय मजा
1: सुनो तो बस।
0: मानो फूल झर रहे हो, अद्भुत सुंदर। तो यही कर्म ऋषि कन्या शकुंतला है, वलकल वस्त्रों में मानो कमल लिपटा हो, पुष्प आभूषणों का श्रृंगार कर मानो साक्षात चंद्र देवी धरती पर उतर आई हो।
3: शकुंतला तू तो उस नटखट हरिण की बात ऐसे सुना रही है मानो वो तेरा प्रेमी हो।
2: बस बस जरा ऐसे ही न जाती खड़ी रहा।
1: क्यों
2: तेरा न जाना देखने वालों के नेत्र तो तृप्त होने दे।
3: देखना तेरे पास खड़े होने से ये आम्र वृक्ष ऐसा सुंदर दिख रहा है मानो इस पर कोई बेल लिपटी हो।
2: प्रियंवदा तुम दोनों तो बस ऐसे ही बनाती हो मुझे।
0: पर बात कितनी सच है।

0: नौ पल्लवों से कोमल अधर, दोनों बाहें मानो दो कोमल टहनियां हो। ऐसा लगता है मानो फूल ही फूल बिखर गए हों सुंदरी के अंग पतंगों में।
1: अच्छा चलो, आप परिहास छोड़ो, कुछ काम भी तो करो। देखो ये बेचारे कब से प्यासे खड़े हैं।
2: कौन प्यासे खड़े हैं शकुंतले?
1: अब परिहास नहीं, लाओ कलश मुझे दो। हाँ पहले अमृतवृक्ष पर जल सेकियो। क्यों सेकियो? जल पाकर कैसे खिल उठते हैं ना वृक्ष।
2: सच शकुंतला, तुझे बहुत प्रिय है ये वृक्ष।
1: सो तो है।
3: अच्छा आप इधर के वृक्षों की ओर भी तो ध्यान दो।
1: अनुसुईया, प्रियंवदा, उधर देखो।
2: क्या
1: वो लता मंजरी कितनी सुंदर लग रही है।
3: ये तो आम्र वृक्ष की स्वयंवरा है, क्यों शकुंतला?
1: हाँ इसीलिए तो मैंने उसका नाम वन ज्योत्सना रखा है।
3: सच
1: कितनी सुंदर दिखती है इस आम्र वृक्ष से लिपटी नवमल्लिका।
2: जानती है प्रियंवदा, शकुंतला को इस लता से इतना प्रेम क्यों है?
3: मैं क्या जानू।
2: हरी अभी ये स्वयं भी तो वन ज्योत्सना है, बस कमी तो आम्र वृक्ष की है।
1: नवमल्लिका तो जल सींचने गई तो दुष्ट भ्रमर मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे अरे सखियो, रक्षा करो ना तेरी इस दुष्ट भ्रमर से।
2: अरे हम कौन होती हैं तेरी रक्षा करने वाली?
1: तू तो दुष्यंत को ही पुकार।
3: हाँ तपोवन की रक्षा का दायित्व तो राजा पर ही होता है।
0: ये अच्छा अवसर है अपना परिचय देने का।
4: ठहर ठहर, कौन दुष्ट है जो इस तपोवन में सुकोमल ऋषि कुमारियों को सता रहा है? ठहर ठहर।
1: अरे अरे अरे आप
2: महोदय, अनिष्ट की कोई बात नहीं है। हमारी प्यारी सखी इस दुष्ट भौरे से परेशान हो गई है।
3: बहुत सुकोमल है ये और भौरा बहुत दुष्ट।
0: संभवतः भौरा इन्हें कमलिनी समझ बैठा है। सच आपकी सखी ऐसी सीखती है।
2: श्री शकुंतला, तू क्या ऐसी लाजवंती सी खड़ी है? भूल गई अतिथि सत्कार का भार तुझे ही सौंपा गया है आश्रम में।
3: तू अतिथि को लेकर सप्तपर्ण कुटिया की ओर चल, हम दोनों जल सींच कर आती हैं।
2: हाँ।

0: चलिए अतिथि इस ओर।
1: मेरा सौभाग्य। आप मेरा परिचय नहीं जानना चाहेंगे?
0: परिचय? उसके लिए तो मन काफी व्याकुल है। आप संभवतः राजपुरुष हैं?
1: हाँ, मैं दुष्यंत हूँ।
0: दुष्यंत? सम्राट दुष्यंत?
1: हाँ हाँ, वही मृगया पर निकला था।
0: आप इन भोले भाले प्राणियों को अपने बाणों के लक्ष्य क्यों बनाते हैं सम्राट?
1: लक्ष्य तो स्वयं मैं बन गया हूँ शकुंतले। अब तक किसी ऋषि कन्या का संग प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए। आपका परिचय?
0: मेरा नाम तो आपको पता ही है, शकुंतला। मैं कण्व ऋषि की पालिका हूँ।
1: शकुंतले, पर ये तेज, ये सौंदर्य विलक्षण है। फिर महात्मा कण्व तो अविवाहित हैं। फिर
0: मैंने कहा ना, मैं उनकी पालिता हूँ। पालिता की पुत्री होती है राजन।
1: फिर आपके माता पिता?
0: उसकी भी एक लंबी कहानी है राजन। आपने कौशिक तेजस्वी राजऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या के बारे में तो सुना होगा।
1: हाँ हाँ, उनके तप ने तो इंद्र को भी चिंतित कर दिया था।
0: राजऋषि विश्वामित्र गौतमी नदी के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे।

0: तपस्या और श्रृंगार के किसी मिलन बिंदु से मेरा जन्म हुआ।
1: ओह, आप समझा शकुंतले, तुमने ये विलक्षण सौंदर्य अपनी माता मेनका से पाया है। तुम तो स्वयं अप्सरा हो शकुंतले।
0: ये आप क्या कह रहे हैं राजन?
1: नहीं नहीं, कह लेने दो सुंदरी, मैं तुम्हारे मोह में चकित भ्रमित सा हो रहा हूं।
0: मेरे मन की भी तो ऐसी विचित्र दशा कभी नहीं हुई थी। जीवन का ऐसा

0: दोस्तों, अभी आपने शकुंतला का ये पहला एपिसोड देखा। इस सीरियल से मैं हमारी पुरानी हिंदुस्तानी मैथोलॉजी को सामने लाना चाहता हूं। इस सीरियल में मैंने पहली बार एक बिल्कुल नई लड़की शकुन को दुषी कुमार जैसे ग्रेट हीरो के साथ पेश किया है, और ये पेशकश कितनी सही रही है ये तो आप अभी देख ही चुके हैं। आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया दुषी कुमार जी। चलिए ऑफिस में बैठते हैं। आओ शकुन, तुम भी आओ।
1: मिस्टर दास, मैं सिने पत्रिका से हूँ, कुछ सवालात हैं शकुन जी से।
0: हाँ हाँ, आइए आइए, ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं।
2: अभी क्या पूछ रहे हैं? मेरे को बहुत डर लगा। अरे कैसे है तू? इतने बड़े सीरियल में काम कर रही है और डरती है? अरे यार, तुझे नहीं पता ये लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। मना कर दे दास जी को। अरे तू तू नहीं समझती पब्लिसिटी कितनी जरूरी होती है इस लाइन में। जा ना तू, जा, मैं बाहर मिलती हूँ।
0: आइए दुषी कुमार जी, तशरीफ रखिए। शकुन, इधर बैठो। हाँ, आप लोग बातें करिए, मैं जरा आता हूँ। शकुन दी,
1: थैंक्स। तो दुषी कुमार जी, पहला क्वेश्चन आपसे ही। आपने तो कई हिट फिल्में दी हैं, कई मॉडर्न रोल किए हैं, इस तरह का पारंपरिक रोल करना आपको कैसा लग रहा है?
3: ओह रियली,
1: बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप दुष्यंत के इस रोल का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे?
3: मिस्टर दास को।
1: देखिए, यूं तो इसके पहले भी हमने उनके साथ कई फिल्में की हैं।
3: जी हाँ,
1: जब उन्होंने मुझसे इस रोल के बारे में कहा
3: जी,
1: तो मैं इनकार न कर सका।
3: ओ
1: अच्छा, एक बात बताइए, शकुन जी जैसी नई लड़की के साथ काम करना कैसा लग रहा है?
3: जैसा आपको एक खूबसूरत लड़की से इंटरव्यू लेने में लगता है।
1: रियली ग्रेट, रियली ग्रेट दुषी कुमार जी। अच्छा शकुन जी, अब कुछ बातें आपसे।
2: जी पूछिए।
1: आपको पहले कभी इस लाइन में नहीं देखा, कुछ बताइए ना अपने पास।

0: के बारे में?
1: क्या बताऊं, दरअसल थिएटर का शौक तो मुझे शुरू से ही था, स्कूली जीवन से। अखबार में शकुंतला सीरियल के संबंध में विज्ञापन देखा, अप्लाई कर दिया, बस दास साहब की मेहरबानी हो गई, यही कर सकती हूँ।
0: अच्छा, दुषी कुमार जी जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करना आपको कैसा लग रहा है?
1: जी क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि एक अद्भुत अनुभव है मेरे जीवन में।
0: ये अनुभव सिर्फ एक्टिंग के बारे में है या? अच्छा दुषी कुमार जी, शकुन तो नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: जी हाँ, ये बात तो सही है, न सिर्फ शकुन के लिए बल्कि मेरे लिए भी ये एक अद्भुत अनुभव है। देखिए, ईमानदारी की बात कहूँ तो हम दोनों जल्दी ही विवाह करने वाले हैं।
0: ओ बधाई हो, रियली ये स्कूप तो पूरी इंडस्ट्री को हिला देगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, धन्यवाद शकुन जी, धन्यवाद दुषी कुमार जी।
2: तुम चुप क्यों हो गए, मैंने कुछ गलत कह दिया?
1: ये आप क्या कह रहे हो, कहा एक मामूली कलाकार शकुन और कहा आप?
2: नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम तो मेरे जीवन में शकुंतला बनकर उतरी हो। शकुंतला
3: मूर्ख सुंदरी, तू महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा को नहीं पहचान रही है, या मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जिसके प्रेम में डूबी है वो तुझे भूल जाएगा।
1: नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं उनके प्रेम को नहीं खुला सकती।
4: अरे ये क्या शकुन, मैं तो अगले एपिसोड के डायलॉग बोल रहा था। मैंने तय कर लिया है, दुर्वासा का रोल मैं खुद करूंगा। देखो शकुन, तुम अभी नई लड़की हो इस लाइन में, मैंने तुम्हें पहली बार चांस दिया है और तुम्हें मेरे डिसिप्लिन का पता होना चाहिए।
0: दास साहब
4: नहीं मिस्टर दुषी कुमार, आप तो मुझे कई सालों से जानते हैं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
0: दास साहब लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
4: जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप दोनों की प्रेम कहानी के बारे में वो रिपोर्टर मुझे बता चुका है, और मैं नहीं चाहता कि जब तक ये सीरियल चल रहा है ऐसी कोई बात सामने आए।
0: अरे दास साहब, आप तो सब कुछ जानते हैं समझते हैं। अरे वो तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, अब ये शकुन नहीं नहीं है, इसके लिए पब्लिसिटी तो जरूरी है ना। बस
4: ओ फिर तो ठीक है।
1: जी नहीं दास साहब, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, और दुषी कुमार जी आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं।
0: गलत?
1: जी हाँ, मैं दास की शकुंतला नहीं हूँ, मैं महाभारत की शकुंतला हूँ।
4: महाभारत की शकुंतला?
1: जी हाँ, महाभारत की शकुंतला, जिसके जीवन में कोई दुर्वासा नहीं है, सिर्फ एक दुष्यंत का प्रेम है और इसी प्रेम से छलना है। नहीं ऋषि कुमार जी नहीं, मैंने आपका प्रेम भी जान लिया है और छलना है, पर मैं भी शकुन हूँ, अधिकार लेकर ही मानूंगी। अब आप जनता के सामने ही उत्तर दीजिएगा, मैं जा रही हूँ।
0: शकुन शकुन

महाभारत की शकुंतला, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। सहयोगी थे श्री कमल शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर श्रीमती कंचन अहलुवालिया, श्री प्रदीप चक्रवर्ती, श्री वाहिद शरीफ, श्री दिनेश दुबे, श्री आबिद अली, श्रीमती नीला अहमद, श्रीमती पद्मिनी महापात्र और श्री निमाई दत्ता। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

0: आक्रमण फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। आगामी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी DSR बुवाई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं

के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर होगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में

0: 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर

0: तेजेंद्र सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की।

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आतिफ असलम, अलीशा चिनॉय और साथियों की आवाजों में। गीत इरशाद कामिल का था और संगीत था प्रीतम का।

0: दबंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्द रचना जलीस शेरवानी की थी और संगीत था साजिद वाजिद का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

देशनगरी फिल्म का ये गीत था पलक मुच्छल और अमित मिश्रा की आवाज़ों में। शब्द रचना मंजर बलियावी की थी, संगीत था गोफी का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन का गाया हुआ। जुनैदवासी के लिखे इस गीत के लिए संगीत चिरंतन भट्ट का है और फिल्म का नाम है जॉली LLB।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान सुनिधि चौहान और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने, संगीत हिमेश रेशमिया का है और फिल्म है 36 चाइना टाउन।

0: ये दिल आशिकाना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत समीर का था और संगीत था नदीम श्रवण का। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे इसी मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल गए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन JRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि JRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया है। इनमें ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े धान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
4: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करें।

0: करीब 26 लाख करोड़ के, और ये सारी की सारी नींव बन रही है हमारे मध्यम वर्ग के लिए जिनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
1: एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज़ बुलेटिन।

नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके साथ है हम रूमी मलिक। और जुलाई शुरू हो चुका है, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। किसी को तनख्वाह मिलती है पहली तारीख को, तो किसी के बैंक में इंटरेस्ट आता है पहली तारीख को। पहली तारीख को हम कुछ न कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, है ना। आज से क्या सोचा है, क्या करोगे? एक्सरसाइज ज्यादा कि चाय कम? हाँ वैसे फल खाने शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी है। यस यस यस, मैं तो बहुत बड़ी फ्रूटेरियन हूँ, फल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन सबसे अच्छा फल क्या होता है? सबसे अच्छा फल होता है मेहनत का फल। जी हाँ, मेहनत का फल इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है। और उस डरने की भी कोई बात नहीं है, वो कोई शुगर वगर भी नहीं कॉज करता। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन, आपका ही अपना प्रोग्राम फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम। हमारे पास हैं शोभापुर गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता कौर जी, और ये सुनना चाहती हैं गीत सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। देखो पहले गीत में हमने आपको बता दिया है ना कितने खूबसूरत मोड़ आते हैं, गाना भी रेडियो पे था, रेडियो स्टेशन पे गा रहे थे ना, कौन गा रहे थे, राजेश खन्ना है ना। और बारिश के मौसम के बारे में, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया, वैसे मानसून की प्रिडिक्शन कल से थी तो भाई आ ही गया आज कल में। तो अब हम अटेंडेंस लेते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, प्रकाश वर्मा, विजय सुरलकर, सोहिल शेख, मसरूर हसन, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सैयद अबासी, अंकित कांगरा, देवशंकर तमूरिया, उत्तम सिंह जिंगहेल, आगे बढ़े बुधराज खोलवाल, कमलकांत गुप्ता, गंगाधर सवनकर, फारूक अली खान, कुमकुम जी, संजय साहूपतिया, असलम मंसूरी, सदानंद मंडूरकर, संजय ढींगिया, कमाल ही हो गया, लखपतराज, नवाब अहमद, मोहम्मद कमर। देखो आज हमने कितनी अच्छी तरह सारे नाम एक साथ ले लिया, और अच्छे बच्चों की तरह आपने भी हमको सिर्फ एक एक मेल ही भेजा। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि सारे शहर में ये गीत सुन लें, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या खाना पीना होता है, क्या एहतियात बरतनी होती है सावन के मौसम में। ओके आइए सुनते हैं गीत।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा गीत। हम तो ये कहेंगे अपने पसंदीदा गीत, अपने दोस्तों के पसंदीदा गीत। गीत तो गीत है ना, मधमाते गाते गुनगुनाते।

खैर वो तो आएगा 5:10 पे, हम ही होंगे उस कार्यक्रम में। लेकिन अभी हमारे साथ है बोधराज कोरवाल जी, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका, और ये सुनना चाहते हैं गीत कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। देखो हम कितना गर्मी गर्मी गर्मी कर रहे थे और कैसे बारिश का मौसम आ गया। दिव्य ऋतु कहा गया है वर्षा को वेदों में, और वर्षा का मौसम बहुत अच्छा होता है। थोड़े से दिक्कत यह आ जाती है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें कीड़े आदि लगने की संभावना होती है, तो शाक या साग नहीं खाया जाता। आप कभी भी देखिए वर्षा के मौसम में, अब तो हमारे भोले बाबा के सावन के व्रत भी अभी उसमें समय है, लेकिन वो भी आएंगे जब, है ना, श्रावण के सोमवार जो आएंगे, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो है थोड़े अवॉइड की जाती हैं। बाकी कभी कभी ऐसा होता है पेट में अगर कृमि या कीड़े हो जाएँ तो उसके लिए प्याज बहुत खाया जाता है, कच्चा प्याज जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। बाकी तो अभ्यंग के लिए, मालिश के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। तो जिन भी लोगों का वात बड़ा हुआ है या तकलीफ होती है, दर्द होता है जोड़ों में या जैसे भी, तो उसमें तिल मालिश बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। और खाने में क्या, जिन लोगों को खट्टा रस अगर पसंद है ना, तो वो इस मौसम में बहुत खाया जाता है। सचमुच में अचार वगैरह जो होते हैं ना, चटनियाँ, ये दरअसल पाचक होते हैं। एक ज़माने में इनको विलन बना दिया गया था, लेकिन अब जब से हमारी सोच में भारतीयता लौट आई है तो हमें अब समझ में आता है कि वाकई में जैसे ज़िंदगी में थोड़ा सा चटपटापन अच्छा लगता है ना, वैसे ही खाने में भी ज़रूरी है। फिलहाल तो ये मीठा मीठा गाना।

गोल्ड एफ एम गोल्ड पर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नई चीज़ आए, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो कोई नया एक्सपीरियंस हो, तो वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे अपना लें। जब आप उसे अपनाते नहीं, आप कोई कहे मुझे तो बारिश बड़ी गंदी लगती है, अरे बारिशें अपने आप में गंदी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि सड़क टूटी हुई है या कहीं पे पानी भरा हुआ है तो आपको वो दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, अनुभवजन्य वो बातें हैं, ठीक है, लेकिन बारिश अपने आप में तो भाई चाहिए ना।

कि रूमी जी रुलाना मत, हमारा मेल पढ़ देना। अच्छा मैंने पढ़ा, उसमें उनके पूरे फैमिली के पूरे टब्बर के नाम थे, लेकिन उसमें गीत की फरमाइश तो थी नहीं। अब क्या मैं रू? नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, जी ये मेरी बंधु परिवार हैं भाई मेरे, और कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनना चाहते हैं कौन सा गीत? सुनना चाहते हैं आसमान से आया फरिश्ता, ये गीत सुनते हैं हम, आइए।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि गाने उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, हो सके तो हमारा नाम भी ले लेंगे। हाँ हाँ ले लेंगे, जबान कोई हमारी दुखती थोड़ी है, नाम लेने पे कोई टैक्स थोड़ी है अभी तक। नमस्कार रूमी बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एफएम गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें, मानसून सबके लिए रहमतों की बारिश करे, यही दुआ है। अच्छी दुआ है ना। किसने लिखा है? सतीश अनेजा जी ने, चंडीगढ़ से। और ये सुनना चाहते हैं रिमझिम गिरे सावन, ये गीत तो बहुत अच्छा है। आइए ना, मौका भी है दस्तूर भी है, तो क्यों ना ये गीत सुन लिया जाए।

जारी है कार्यक्रम मन भावन। कितनी सारी ईमेल्स आ रही हैं, कमाल कमाल हो रहा है आज तो। विजय सुरालकर जी क्या लिखते हैं देखें, जानकारी और गीतों से भरपूर

कार्यक्रम का आज मजा आ रहा है, लाजवाब पेशकश। रोमी दीदी बहुत ही प्यारा गीत है, जरूर बजाना प्लीज। बिल्कुल आपका नहीं तो किसी और का तो प्ले करेंगे इसी। विजय जी देखो मुझे माइकल कश्यप नाम देखो, माइकल माइकल कश्यप जी कहाँ से लिख रहे हैं, गांव दूधली जिला मुजफ्फरनगर लिख रहे हैं। गीत है इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, फिल्म है जुर्म की पुकार। और रोमी मलिक देखो रोमी लिख दिया है, आर ओ एम आई कर दिया है, मैं बात नहीं करूंगी ठीक है ना, माइकल को फिर मैं कुछ और बना दूंगी नहीं तो। रोमी मलिक जी 2 साल बाद मेल भेजा है, प्लीज गीत सुनवा दो। देखो माइकल जी अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं जिसको कहते हैं कि शूटिंग इन द डार्क, है ना, अंधेरे में तीर चलाना। अब मैंने तो ये गाना सुना नहीं और जुर्म की पुकार टाइप की फिल्म भी नहीं सुनी, पर मैंने ढूंढी और देखो मेरे कंप्यूटर जी कितने अच्छे, उन्होंने निकाल भी दिया। अब ये गीत हम सुनते हैं ठीक है, इस इश्क मोहब्बत की कुछ हैं अजीब रस्में। आओ खाएं कस्में कि देंगे एक दूसरे का साथ आरजे और लिसनर।

मान गए आपको माइकल कश्यप जी, बड़ा अच्छा गीत आपने हमको सुनाया सुनवाया। अच्छा जी, अब हमारे पास बड़ी सारी मेल्स आई हैं, जरा मैं देख लूँ कौन कौन सी हैं। रिस्पेक्टेड जी रूमी मलिक जी, आपको पहली बारिश की बूंदें मुबारक हो जी, आपके जीवन में भी सदा खुशियों की बरखा होती रहे। यह गीत जो है कहते हैं आपकी पसंद का ही। सहारनपुर से लिख रहे हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर। क्या बात है जी, अभी मैं पीछे कुछ दिन पहले गई थी कहीं पे, तो बीच में सहारनपुर का स्टेशन आया था और 35 मिनट रुकी थी ट्रेन हरिद्वार जाने वाली। हाँ जी, साथ में दिग्दर्शन कौर जी जो है कहती हैं आप मेरी गुरु बहन हैं और आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है, तो 30 तारीख से, तो आप हमें इसके बारे में बताएंगे। भक्ति वाला महीना है, भक्ति वाला महीना तो है, बिल्कुल है। भारतीय परंपरा में बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि ये जो मन है ना, सबसे ज़्यादा यही दुखी करता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते मत चालिए पलक पलक मन और। तो मन को बांधने के लिए होता है मंत्र। जी हाँ, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब गहन अध्ययन किया तो उन्हें प्रकृति की तरफ से ही, कायनात की तरफ से ही ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे मंत्र मिले जिनका बहुत ही हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और आकांक्षाएं मनोकामना भी पूरी होने लग गई। अब हर किसी को यही चाहिए कि हाय मेरी बात मानी जाए, मेरा काम बन जाए, यही हम चाहते हैं ना। और क्या चाहते हैं, भगवान को क्यों मनाते रहते हैं, मेरा काम बन जाए। तो जब चौमासा आता है, अब देखिए बारिशें आ गई हैं, तो पहले क्योंकि ये बड़ी अच्छा एक साइकिल था हमारा प्रकृति का, नेचर का, 4 महीने लगातार बारिशें होती थी और किसान क्या करे भाई, खाली छोड़ के वो तो बैठा हुआ है ना। तब क्या होता था, गांव गांव में भागवत के या रामायण जी के बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े 4 महीने किसान या जितने भी लोग हैं, है ना, परंपरागत तो सभी लोग सुनते थे कथा कहानियाँ। तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर बात है। आप देखो, हमारे देश में पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, संस्कार जो है ये हर किसी के अंदर है ना, व्यवहार में ही संस्कार है। क्योंकि आप देखो ना, जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, अब ज़रूरी नहीं है कि किसी को पढ़ना आता हो, लेकिन उसे पता है रामायण में क्या घटित हुआ, क्या सही है क्या नहीं है। तो अच्छे बुरे की समझ होना बहुत बड़ी बात है। दिल से शुक्रिया कौन कर रहे हैं मुझे, कमलेश, सचिन, मुकुल और दीपांशु। फिल्म बदलते रिश्ते मेरी सांसों को जो महका रही है। अच्छा चलो, ये गीत सुना देती हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर कुछ और भी हमें गीत लेने होंगे। टन टन, डी के परिहार जी डी के परिहार जी लिख रहे हैं, हमारा तो न मैसेज इंक्लूड होता है न फरमाइश बेटी, बताओ ज़रा, इतनी कंप्लेंट करोगे तो बात नहीं करेंगे हम। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमें लिखा ही नहीं है कि कौन सा गीत ये सुनना चाहते हैं, है ना, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये वाला गीत सुना सकते हैं आपको, जो डिमांड किया अभी, मेरी सांसों को जो महका रही। आइए सुनते हैं ये गीत।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन, मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। और किसी भी तरह से कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सभी लिसनर्स के नाम लिए जाएंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं तो अपने प्रोग्राम में आपकी अटेंडेंस भी लेती हूँ। अब अगर आप मुझे मैसेजेस भेजेंगे और ये हक से डिमांड करेंगे तो ये हक नहीं है, हमारा प्रेम है। याद रखिएगा, मोहब्बत का रिश्ता जो है ना दोस्तों, बड़ा नाजुक होता है ना। ज़रा सा भी उसमें कुछ इधर उधर बदलाव हुआ तो गांठ लग जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लिसनर्स देर से जुड़े हैं और कह रहे हैं हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारा मैसेज लिया जाए। क्यों मैं आपके सिर्फ नाम पढ़ने के लिए मैसेज ले लूँ? आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बताएं, ऐसा क्या योगदान किया आपने, मुझे कोई एक अच्छा विचार दिया या कोई बात की मीठी, या किस तरह से, मतलब आपका नाम किस लिए, हाउ डू यू क्वालिफाई बताएं। तो हमारे साथ मोहम्मद इरशाद भी हैं, उन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लो, ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ वरना हम रो देंगे। इतना क्यूट मैसेज है, कस्बा बिलराम से इन्होंने लिखा है। मोहम्मद इरशाद साहब, आप देखो आपका मैसेज मैंने पढ़ भी दिया है ना। अब काफ़ी लंबे समय से गर्मी सह रहे थे और मानसून आया देर से। कहते हैं ज़िंदगी में पहले बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और फिर राहत, सुकून और आराम भी मिलता है। क्या बात है, ग्राम करेली बरेली से। अच्छा, ऐसा भी है, ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी लिख रहे हैं, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अच्छा, अब धर्मेंद्र चीपा जी जो हैं ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं किन किन और भी आइडिया से कई लोग भेजते रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत नई फिल्मों के गीत भेजे हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं बजा पाऊंगी, है ना। ओ मम्मी डैडी टाइप के गीत यहाँ पे नहीं बजते हैं, इतनी समझ अब तो होनी चाहिए। अशोक वर्मा जी, हम ये कह रहे थे कि आपका वाला गीत सुन लें ज़रा, एक सेकंड देखते हैं, पहले तो मैं ये गीत ज़रा पहले देखूँ है ना। देखो ना, हाँ जी बिल्कुल है ना, क्योंकि अब मुझे लगता है आप सभी क्योंकि सावन के ही पीछे पड़ गए तो सावन वाला गीत सुना जाए। तो ये ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, है ना। अच्छा, खंडवा से भी हैं लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, तो पूरे परिवार ने लिख दिया। मास्टर खिल्लू परवेज जी नमस्ते, ये लिख रहे हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा तो है ही सही। तो मैं कह रही थी कि आखिरी गीत रहेगा अब, है ना, तो मुस्कुराना।

चार्ली चैपलिन कहा करता था कि मुझे बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि भीगती हुई बारिश में मेरे आंसू नहीं दिखाई देते। कितनी पॉइग्नेंट बात है ना, कितनी मार्मिक बात है ना। तो ना हम खुद रोएं ना दूसरों को रुलाएं, मीठा बोलें, लंबी देर तक हमें लोग याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस कार्यक्रम का, मन भावन का, ये गीत आपके सामने।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

0: मार्ग NH148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीकों को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र में एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi.

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: The recruitment offers excellent opportunities for professionals aspiring to build careers in the aviation and aerospace support sectors. Interested candidates can apply online through the career section of the company's website by 10th July 2026. And the website is www.pavanhans.co.in. I repeat, it is www.pavanhans.co.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक, ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है TGT समाज विज्ञान पद के लिए आवेदन। पद नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। मुंबई पत्तन प्राधिकरण में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले उपनिदेशक वर्ग एक के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in पर उपलब्ध हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए www.mumbaiport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाश।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम

आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के डेडलाइन सेगमेंट में बात करेंगे धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले, यानी जो डॉक्टर्स हैं जो कई बार मुश्किल हालात में हमारे लिए बन जाते हैं देवदूत। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ

0: पान का रूप माने जाने वाले यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो कई बार मुश्किल हालात में हमारे लिए बन जाते हैं देवदूत। आज के संक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जागृति। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट, एज यू जस्ट मेंशनड, let us extend our gratitude to all the doctors on National Doctors Day today for all the pain you take away, for all the lives you save today and every day. We are grateful for your selfless service. You are the true guardians of our health, working long hours to bring healing and hope to countless families. Greetings to all the doctors on the occasion of the National Doctors Day and salute to the caregivers of the society. So shall we now begin with the news making headlines at this hour of the day, Jagriti?
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है।
1: Increased wages under Viksit Bharat Jiramji Act become effective from today.
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
1: Chief of Army Staff General Dheeraj Seth takes charge as the 31st Army Chief, stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment.
0: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया।
1: Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in next 2 days.
0: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
1: And it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And as Jagriti had all mentioned in the beginning, that we will be talking about National Doctors Day today. Every year on 1st of July, India celebrates National Doctors Day to recognize the invaluable contribution of doctors to society and honor their dedication to saving lives. The occasion pays tribute to medical professionals who work tirelessly to care for patients, often in demanding and high-pressure environments. National Doctors' Day was first observed in 1991. The date, 1st of July, was chosen because it marks both the birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy. Dr. B.C. Roy was born on 1st of July 1882 and passed away on this very day in the year 1962. He was a physician, educator, freedom fighter and a statesman. He also served as the Chief Minister of West Bengal and made lasting contributions to healthcare, education and public service. He was awarded the Bharat Ratna in 1961 for his contribution to the nation. His life continues to represent service, discipline, medical excellence and commitment to society.
0: जी, यानी 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन भारत के एक ऐसे महान सपूत को समर्पित है जिन्होंने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद रखी। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय केवल असाधारण डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी, महान शिक्षाविद और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी थे। नेशनल डॉक्टर्स डे हेल्थ केयर वर्कर्स के त्याग, दया और समर्पण को सराहने और अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थ केयर की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मौका है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी मास्क के पीछे इलाज करने वालों का इलाज कौन करता है। ये विषय दूसरों की देखभाल के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देने वाले डॉक्टरों की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत का ध्यान देने के महत्व पर बल देता है।
1: Yes, Jagriti, modern healthcare depends on trust. You may visit a doctor when you are unwell, worried about a symptom, planning preventive care, managing a long-term condition, or seeking reassurance for a loved one. In each situation, doctors do more than prescribe medicines. They listen, examine, explain, diagnose, counsel, and help you make informed decisions. National Doctors' Day reminds us that healthcare is built on both science and human care. It is a day to recognize the commitment doctors show in clinics, communities, emergency care, public health, research, teaching, and also in preventive medicine.
0: जी, और कई बार अनुजा हमने और आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं

0: ठीक नहीं लग रहा होता है, हम क्लिनिक पर जाते हैं और डॉक्टर के साथ में हम जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, आधी बीमारी कई बार हमारी वहीं पर हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो जो जिस पेशेंट्स के साथ वो सुनते हैं और हमारा जो काउंसलिंग करते हैं वो भी मतलब काबिल तारीफ है. इसके अलावा नई जिंदगी की शुरुआत इन्हीं डॉक्टर्स के हाथों होती है. नवजात शिशुओं की देखभाल, माताओं की जो मदद करते हैं, इन्फेक्शन हो किसी को तो इसका इलाज, पुरानी बीमारियों को जिस तरह से मैनेज किया जाता है, सर्जरी करते हैं और हमारे जो ठीक होने की प्रक्रिया है इस पर भी नज़र रखते हैं और परिवारों को मुश्किल मेडिकल स्थितियों को समझने में भी वो मदद करते हैं. और ये भूमिका सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होती है बल्कि डॉक्टर बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं, जिसमें कि वैक्सीन देना हो गया, वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन यानी कि आपको कौन सी बेहतर चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें, तो न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर काम करते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट या लाइफस्टाइल में बदलाव, बीमारी के शुरुआती संकेत और हेल्थ से जुड़े ज़रूरी टेस्ट जितने भी होते हैं उनके बारे में भी ये डॉक्टर्स हमें जानकारी देते हैं और इस तरह से हमारी स्वास्थ्य का ये ध्यान रखते हैं.
1: Yes, a good doctor helps to understand our health without creating panic. They explain the risks, answer questions, and guide us towards the right next step. National Doctors Day celebrates this blend of knowledge, responsibility, empathy, and service. Nowadays, more patients now want to understand their health better. They want clear reports, convenient access to testing, and reliable guidance as well. Doctors also rely on accurate diagnostic support to make timely decisions. This makes collaboration between doctors, patients, and diagnostic partners more important than ever.
0: बिल्कुल. और डॉक्टर्स की केवल तारीफ करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उनके रोल को और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो इमरजेंसी के टाइम पर उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, हमने कोविड में देखा है कि डॉक्टर्स ने 36-36 घंटे बिना ब्रेक लिए, बिना अपने घरों में जाए, लगातार लोगों की जान बचाने के लिए जो वो योद्धा बने, उन्होंने जिस तरह से लोगों की जान बचाई और हेल्थ केयर सिस्टम को उन्होंने मजबूती दी, वो उसके लिए हमें उन्हें समझना चाहिए. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ को किस तरह से महत्व देते हैं, हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं. आजकल जैसे लाइफस्टाइल बीमारी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसके लिए वो आपको टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, लगातार निगरानी रखते हैं और आपको सलाह देते हैं जिससे कि जो भी ऐसी समस्याएँ हैं अर्ली स्टेज पर उनका पता चले. और उसके साथ साथ वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी कैसे डाइट लेनी है और जो टेस्ट हैं जितने भी ज़रूरी उनको भी करवाने की जो सलाह देते हैं. तो डॉक्टर्स की सलाह हम लोगों को माननी चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही है.
1: Certainly, Jagriti, National Doctors Day is a reminder of the trust, effort and care that shape every healing journey. It honors the doctors who help you understand symptoms. They also help us understand and manage illness, prevent complications and make informed choices for our health.
0: बिल्कुल. डॉक्टर्स डे के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने देश भर के डॉक्टरों को बधाई दी है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने मानवता की सेवा में डॉक्टर्स के समर्पण, संवेदना, कौशल और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की. श्री राधा कृष्णन ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की. उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में देश की यात्रा में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत पहल के माध्यम से किफायती हेल्थ केयर के विस्तार, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डिजिटल हेल्थ केयर को तेजी से अपनाने को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया.
1: Even Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the doctors of the country on the occasion of National Doctors Day today. And in a social media post, Mr. Modi said that their hard work, compassion and commitment form the backbone of India's healthcare system. He added that their tireless efforts, often in the most challenging circumstances, have earned the trust and gratitude of countless people.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने देशों के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काफी तरक्की की है. मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है जबकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. ये अभूतपूर्व विकास डॉक्टर बनने के इच्छुक लोगों के लिए मौके अधिक दे रहा है, एक मजबूत हेल्थ केयर वर्क फोर्स तैयार कर रहा है और

0: ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि अच्छी मेडिकल सुविधाएं देश के हर कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है, इसलिए देश के डॉक्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने, मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाने, इनोवेशन को अपनाने और सभी के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
1: एंड अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा हैज आल्सो एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी फॉर इट्स अनवेवरिंग डेडिकेशन। इन अ वीडियो मैसेज मिस्टर नड्डा लॉडेड द डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर देयर एग्जेम्पलरी प्रोफेशनलिज्म एंड कंपैशन service to humanity, describing doctors as the cornerstone of the country's healthcare system. He recalled their tireless work to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. He added that doctors also have played a vital role beyond hospitals and clinics by serving as advocates for health equity, preventive health care, public health awareness, and also social justice. The minister further expressed hope that the selfless commitment and resilience of doctors continue to inspire the nation and strengthen the collective pursuit of a healthier India.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है।
1: एंड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एमएसएमई सेक्टर कंटिन्यूज टू बी अ की पिलर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। गोवा हैज ऑल्सो विटनेस स्टेडी एक्सपेंशन इन द सेक्टर थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
2: The MSME sector remains one of the key drivers of India's economy, contributing significantly to employment, manufacturing and entrepreneurship. According to official data, over 7 crore enterprises are registered on the Udyam portal, providing employment to around 32 crore people across the country. In Goa, more than 90,000 MSMEs have been registered, reflecting the steady growth of the sector in the state. The state has undertaken several initiatives to promote industrial development, including support for manufacturing and maritime industries, with efforts focused on expanding Goa's production capabilities. There is also a growing emphasis on creating digital platforms that enable MSMEs to showcase and market their products globally, helping local enterprises access international markets and improve competitiveness. The continued expansion of MSME sector is expected to strengthen Goa's economy while contributing to India's broader industrial and employment growth. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
0: और अब चलते हैं वाराणसी की ओर, जहां पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूर्वांचल और देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई। पिछले 25 जून को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली हब एंड स्पोक विमान सेवा की शुरुआत की। नई व्यवस्था के तहत वाराणसी एयरपोर्ट को प्राइमरी स्पोक के तौर पर विकसित किया गया है, जो यात्रियों को देश के प्रमुख हब एयरपोर्ट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुगम बनाएगा। केंद्रीय विमानन मंत्री ने वाराणसी एयरपोर्ट से देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत को एक ऐतिहासिक कदम बताया।
3: हब एंड स्पोक सेवा की शुरुआत के साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट देश के विमानन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। इस पहल से वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट पर जाकर दोबारा लगेज लेने, टर्मिनल बदलने और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इमिग्रेशन और अन्य औपचारिकताएं वाराणसी में ही पूरी होंगी, जिससे यात्री दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कर सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हब एंड स्पोक की यह पहल वाराणसी को सीधे वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि किसी शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है। श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। निश्चित तौर पर इस पहल से पूर्वांचल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी लाभ मिलने वाला है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: और अब आते हैं मध्य प्रदेश की ओर,

0: प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 12 उद्यानिकी फसलों को एक साथ भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है। देश में ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग हासिल हुआ है।
1: Yes, Jagriti, this will certainly give a major boost to farm exports and the 12 newly certified products span unique native fruits, vegetables and agro-processed commodities as well in this.
0: बिल्कुल, और आइए सुनते हैं अधिक इस रिपोर्ट में।
2: मध्य प्रदेश की माटी की खुशबू अब देश दुनिया में और गहरी हो गई है। प्रदेश की 12 उद्यान की फसलों को एक साथ GI टैग मिलने से ये इतिहास रचा गया है। गुना का सुगंधित कुंभ राज धनिया, नरसिंहपुर के बरमान घाट का भटा और बैतूल का गजरिया आम इसमें शामिल है। खरगोन की तीखी लाल मिर्च और मांडू की अनोखी खुरासानी इमली को भी ये सम्मान मिला है। जबलपुर की हरी मटर, सिवनी का जम्बो सीताफल, मालवा का आलू गराड़ू और नरसिंह पुर का गुड़ भी इस सूची में शामिल है। जबलपुर का सिंघाड़ा, अलीराजपुर का नूरजहां आम, बुरहानपुर का केला, इंदौर का जिरावन मसाला, रतलाम की बालम ककड़ी और छतरपुर का पान भी अब GI टैग के गौरव से जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि गुना जिले से हर साल 32,000 मेट्रिक टन धनिया देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा बनता है और विदेशों तक पहुँचता है। GI टैग मिलने से इन उत्पादों की पहचान और बाजार में साख मजबूत होगी, साथ ही नकली उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगेगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और निर्यात के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: और पुरी में विश्व विख्यात महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। श्री मंदिर में रथ यात्रा से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। देवस्नान पूर्णिमा के बाद भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अनसर यानी अनवसर काल में हैं। मान्यता है कि महाप्रभु इस दौरान ज्वर से पीड़ित होते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष सेवाएं और उपचार संबंधी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान बीमार होकर अनसर काल में श्रद्धालुओं को शिव विग्रह के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इस अवधि में भक्त केवल शिव मंदिर में स्थापित पट्टी दिया यानी पट्ट चित्र स्वरूप के दर्शन अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शिव मंदिर के भीतर महाप्रभु के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार विशेष सेवाएं जारी हैं। उधर भगवान के अनसर काल के दौरान पुरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ पीठ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु भगवान अलारनाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते तब भगवान अलारनाथ के दर्शन करने से ही वही पुण्य प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ संस्कृति के जानकार
4: तुम्हें रंजन पंडा कहते हैं।
5: स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु जी के स्नान के बाद महाप्रभु जी बुखार आ जाती है और उनको अनवसर नीति बोलते हैं। उसके लिए 15 दिन महाप्रभु जी को कोई भी दर्शन नहीं करेंगे, कोई स्पर्श नहीं करेंगे, कुछ महाप्रभु जी के अन्न भोग भी नहीं लगेगा। अलग एक भोग का व्यवस्था करा जाती है, जैसे चकटा भोग, प्रपानक भोग, मलाई भोग, ये सब लगता है। और बाहर में महाप्रभु जी का चित्रपट का सेवा होती है, जैसे नारायण, वासुदेव और भुवनेश्वरी, ये पूजन होता है। और देखेंगे तो ये 15 दिन महाप्रभु जी का विश्वावसु और विद्यापति जो वंशज है उनके सेवा रहता है। अंदर में महाप्रभु जी का स्वस्थ करने के लिए सुविधा रहता है। अनवसर का पंचम दिवस में महाप्रभु जी का तैल मर्दन होगा और इसी समय में जो भी भक्त आती है महाप्रभु जी का दर्शन नहीं पाती है वो कहाँ पर जाती है, ना अलारनाथ का दर्शन करते हैं और वहाँ पर खीर प्रसाद जो पायस भोग फूलते हैं वो भी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि महाप्रभु जी को एक छोटा बच्चा वहाँ पर प्रसाद खीर भोग लगाए थे और महाप्रभु जी पाए थे।
3: अनसर काल की ये परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान के स्वास्थ्य लाभ की अवधि में अलारनाथ दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व तो माना जाता है और इसी कारण हर वर्ष इस दौरान वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आगामी रथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार और शिव मंदिर प्रशासन भी व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वर्ष रथ यात्रा के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पूरी पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से महाप्रभु के दर्शन कर सके। इस वर्ष 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होगा। इसके बाद 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा, 25 को सुनावेश, 26 को अधरपणा नीति,

0: And today we also wish a very happy birthday to Sudesh Bhonsle, the singer who had the voice of Amitabh Bachchan.
1: और इसके साथ ही जागृति और अनुजा को दीजिए इजाजत.
0: नमस्कार.
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है. 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है. कृपया हमारी अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट.

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गढ़गांव, बरडांड, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़े केला, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
3: हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की

प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर, चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवावाणी कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे पत्र मिला और यादें। सुगम संगीत शाम 6:30 पर, कलाकार होंगे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा। शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम में सुनिएगा चिट्ठी मिलिस और आज की बात होगी ये महीना के कृषि कार्य के बारे में। आज की सलाह में जैव उर्वरक अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर दीपमाला लकड़ा विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा देंगी जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे बिचोली पांडा का सितार पर बजाया राग किरवानी। चित्रपट संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर और रात 10:00। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा कल रात 10:30 से खेल की समाप्ति तक। स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर। बालवाटिका कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर बेरा के बाद का विषय होगा पेड़ पौधा धरती की आभूषणाएं यहूला जानव में हमर देश माँ कैसे होती बारिश, इस विषय में वार्ता आप सुनेंगे। वार्ताकार होंगे श्री सूर्यकांत तिवारी और होगा लयका मन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फुलवारी। प्रगति की सोपान कल सुबह 9:00। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे गंगाबाई गेनाम और साथी। और इसी कार्यक्रम में कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे मदन मेहर और साथी। स्वरधारा कार्यक्रम कल सुबह 10:00, कलाकार होंगे अनूप चलोटा और कोयल और आप सुनेंगे आशा भोसले की गायी रचना। ईमेल भेजिए फिल्म संगीत सुने कल सुबह 11:05 पर। लोकसुधा कार्यक्रम में कल दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे हल्बी गीत, कलाकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया कल दोपहर 1:30 पर। आज की बात का विषय होगा जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन। सृजन संसार में सुनिएगा प्रमिता ठाकुर की कहानी नामकरण, होंगी कुछ बातें कुछ गीत और साथ ही होगी दीदी की सलाह। युवावाणी कार्यक्रम कल शाम 5:10 पर। अपन गोट का विषय होगा गांव में खेल की शुरुआत करो, माटी के आखिर में सुनिएगा गणेश्वर पटेल का कविता पाठ और आप सुनेंगे माटी के गीत। कल शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा ये माह के पशुपालन कार्य। 7:30 पर किसान वाणी में आज की सलाह में कटहल के व्यावसायिक खेती, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अभय बिसेन। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, आपकी शाम को और खूबसूरत बनाने आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त। मैं मलिका सुभाशीष
1: और मैं आदित्य शुक्ला, तो स्वीकारिए हमारा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: मलिका, आज 1 जुलाई है, यानी आज का दिन बहुत ही विशेष है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। आज के दिन को पूरा देश राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। ये दिन हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल हीरोज के लिए सम्मान और आभार जताने का एक अवसर है।
0: भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत साल 1991 में की थी। ये दिन देश के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को समर्पित है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद रखने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी।
1: सही दोस्तों, डॉक्टर्स को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। और आदित्य, तुम्हें पता है हमारे पास डॉक्टर्स की तरह एक और लाइफ सेवर है। डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए इलाज और दवाइयाँ मुख्यतः आयुर्वेद में हमें मिलते हैं वन से, इसीलिए हमें उनका संरक्षण भी करना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है और बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं?
1: दोस्तों, जल, वायु, पेड़ पौधे और ना जाने कितने ही ऐसे तत्व हैं जिनके बिना हमारा जीवन जीना नामुमकिन है।
0: और साथियों, यही वजह है कि पर्यावरण की सुरक्षा और इसका संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य बन जाता है।
1: और जैसा कि आज मैंने कहा, 1 जुलाई है, आज से शुरुआत हो रही है वन महोत्सव सप्ताह की। ये एक ऐसा सप्ताह है दोस्तों जिसमें लोग बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण करते हैं, प्रकृति को सुरक्षित रखने के संकल्प लेते हैं।
0: वैसे मल्लिका, क्या तुम हमारे श्रोताओं को बताओगी कि इस वन महोत्सव की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: क्यों नहीं आदित्य। दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 1950 में देश के तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इनका मुख्य उपदेश लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
0: दरअसल मुंशी जी का मानना था कि पेड़ लगाना सिर्फ एक सरकारी काम या औपचारिकता बनकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनना चाहिए जिसमें हर नागरिक की भागीदारी हो।
1: बिल्कुल। और क्या तुम्हें पता है आदित्य, इसके लिए जुलाई का पहला हफ्ता ही क्यों चुना गया?
0: क्योंकि मलिका, इस दौरान भारत में मानसून का आगमन होता है जिससे मिट्टी में अच्छी नमी आ जाती है और बारिश की सुनहरी बूंदों से मिट्टी महक उठती है। इस मौसम में लगाए गए पौधों के जीवित रहने और उनके तेजी से बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। साथ ही शुरुआत में उन्हें अलग से बहुत ज्यादा पानी देने या अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, बढ़ते वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव और लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य को समझना और वृक्षारोपण करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
0: बिल्कुल मलिका, और वृक्षारोपण के तो कई बेमिसाल फायदे हैं, जैसे ये शहरी ऊष्मा को कम करता है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को घटाता है, हवा में मौजूद प्रदूषण को कम कर हवा को शुद्ध बनाता है। इसके साथ ही पेड़ आपके आसपास के तापमान को 2 से 4 डिग्री तक कम कर सकते हैं और कई जीव जंतुओं व पक्षियों को आश्रय देने में भी मददगार साबित होते हैं।
1: यही वजह है आदित्य कि हर साल वन महोत्सव कुछ खास और मुख्य विषयों यानी थीम पर आधारित होता है, ताकि ये संदेश सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, अमृत वन या फिर मिशन लाइफ, ये सब अलग अलग अभियान रह चुके हैं।
0: हाँ मलिका, इसके साथ ही बच्चों को स्कूल के दिनों से ही वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी बेहद आवश्यक है। यह आदतें बचपन से ही उनके भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: सच में मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। बचपन में मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, वो कब एक बड़ा पेड़ बन गया पता ही नहीं चला। उसके साथ आज भी मेरा एक अटूट रिश्ता है जो दिल को सुकून देता है।
0: बिल्कुल मलिका, और इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए सरकार की कई नीतियां और NGOs लगातार काम कर रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: लेकिन आदित्य, इस महोत्सव के दौरान हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखाने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए नीम, पीपल, बरगद जैसे बड़े बड़े वृक्षों का रोपण कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी देखभाल नहीं करते। सिर्फ पौधा लगाना काफी नहीं है दोस्तों, उनकी सही देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो पर्यावरण के लिए

0: वाकई मददगार साबित हो सके।
1: बिल्कुल सही कहा मलिका, हमने प्रकृति से जितना लिया है अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उसे लौटा दें तो बहुत बड़ी बात है। याद रखिए, आपका लगाया हुआ एक पेड़ हमें कई सालों तक शुद्ध हवा और बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, वन महोत्सव सिर्फ एक त्योहार या औपचारिकता नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों का एक बेहद महत्वपूर्ण स्मरण है। दोस्तों हमें ये याद दिलाता है कि पेड़ हमारे जीवन का असली आधार हैं।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास भारत के सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दे सकता है। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य देश के वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर 33% तक ले जाना है। ऐसे में आपका एक एक पौधा इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा।
0: इसीलिए साथियों आइए इस बार हम सब मिलकर धरती माँ के नाम कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी जिम्मेदारी से करें।
1: और हमेशा याद रखिए, अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल आने वाली पीढ़ी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

चलिए, दिन है बुधवार और हमारे सामने हैं आपके भेजे ढेर सारे पत्र और ईमेल। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं क्रम पत्रमेला की। तो आइए शुरू करते हैं श्रोता पत्रों पर आधारित क्रम पत्रमेला।

0: साथियों, बढ़ते हैं सबसे पहले पत्र की ओर। और पहला पत्र हमें आया है सिमगा से लव कुश सेन और प्रहलाद सेन की ओर से, और ये लिखते हैं 5 जून को प्रसारित आजकल में युवा भारत युवा संकल्प, इस क्रम में कठिन रास्ते मंजिल तक पहुंचते हैं। इस विषय पर अपेक्षा शुक्ला और संस्कार जैन की बात हमें बहुत प्रेरणादायी और रोचक लगी। जो कठिन को सरल बना लेते हैं उन्हें अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है, जो कठिनाई से कतराते हैं वे पथ में ही भटक जाते हैं। क्रम मार्गदर्शन में डॉक्टर सुमिता दवे से दीपक हटवार की बातचीत हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष चर्चा हमें पर्यावरण के प्रति ध्यान देने की बात कही, पेड़ पौधे रोपने की बात कही, प्लास्टिक का उपयोग ना करने व कैरी बैग का उपयोग करें। 10 जून को प्रसारित अपेक्षा शुक्ला द्वारा प्रस्तुत पत्र मिला कार्यक्रम मन भावन एवं रोचक लगा। आरव शुक्ला के पत्र पढ़ने की शैली मनमोहक लगी। 12 जून को प्रसारित आजकल में पलक और सिद्धांत शुक्ला द्वारा प्रस्तुत बाल श्रम दिवस पर विशेष जानकारी उपयोगी लगी। 14 जून राग नंदिनी मांड एवं पद्मश्री दादरा नायिका गिरिजा देवी पर विशेष कार्यक्रम मधुर लगा। इसके लिए वाचन स्वर पायल विशाल एवं वीर भान साहू बधाई के पात्र हैं।
1: दोस्तों, इन्होंने हमें इन दिनों के साथ साथ 8, 14, 15, 17 जून को प्रसारित कार्यक्रमों के लिए भी बधाई पत्र भेजे हैं। सबसे पहले आपका दिल से आभार हमें इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। दोस्तों, हमें अत्यंत प्रशंसा होती है जब हम देखते हैं कि आप न केवल नियमित रूप से कार्यक्रम सुनते हैं बल्कि उनकी विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण और संदेश पर भी गंभीरता से ध्यान देते हैं। आकाशवाणी का निरंतर प्रयास रहता है कि प्रत्येक कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ज्ञानवर्धक जानकारी और स्वस्थ मनोरंजन पहुंचाएं। एक बार फिर इन पत्रों के लिए आपका दिल से शुक्रिया।
0: अगला पत्र हमें आया है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा और सचिन वर्मा की ओर से, और ये लिखते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजलक्ष्मी और रोशनी पांडे ने योग की महत्वता को प्रतिपादित किया। 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया की योग की महत्वता को समझाया और इसे भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। योग संगम से विचार व व्यवहार अनुशासित होता है। योग की सुंदरताओं में से एक खूबी यह भी है कि बूढ़े या युवा, स्वस्थ या कमजोर, सभी के लिए योग का शारीरिक अभ्यास लाभप्रद है। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है।
1: सबसे पहले तो हम अपने साथियों को तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। इन्होंने हमें 10, 15 और 21 जून के कार्यक्रम के लिए भी अपने बधाई पत्र भेजे हैं। इनके पत्र की सबसे खूबसूरत बात

0: क्या है आदित्य,
1: क्या
0: इन्होंने आजकल के विषय पर अपने विचार बखूबी अपने पत्र में लिखे हैं और इस पत्र से ये समझ आता है कि ये हमारे कार्यक्रम कितने ध्यान से सुनते हैं और इस कारण इनके ज्ञान में कितनी वृद्धि हो रही है। आपके ये पत्र हमारे लिए अनमोल होते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे और अपनी प्रशंसा सुझाव हमें भेजते रहेंगे। एक बार फिर आपका धन्यवाद।
1: अगला पत्र हमें आया है पुनु राम साहू मगर लोड जिला धमतरी से और ये लिखते हैं, दिनांक 14 जून के कार्यक्रम में विश्व रक्तदान रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रारंभिक चर्चा करते हुए रक्तदान महादान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पिछले 2 वर्ष पूर्व एक बार मैं भी रक्त की कमी से गंभीर रूप से जख्म रहा था। तब 2 महान रक्तदाता युवक सूचना पाकर स्वयं मेरे पास अस्पताल आए और मेरे लिए स्वेच्छा से रक्तदान किया। मैं आभारी हूँ उन दोनों युवा रक्तदाता के प्रति जिन्होंने समय पर मुझे सहयोग प्रदान किया। इस दिन राग नंदिनी क्रम में रागमांड पर जानकारी के साथ संबंधित गीत सुनने का अवसर मिला। अगला पत्र हमें आया है 21 जून को क्रम आज मेरी बारी है कार्यक्रम में रक्षा जायसवाल से उनके पसंद के गीत सुने जो हमें बेहद पसंद आए। ये हमें भेजा है चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रिहाना बेगम ने।
0: और अगला पत्र कहाँ से आया है?
1: अगला पत्र हमें मिला है मलिका नर्मदा धाम सुरसुली से, कैलाश और सुरेश से और ये लिखते हैं, 8 जून के कार्यक्रम के लिए सोमवार 8 जून आजकल में विश्व महासागर दिवस पर बातचीत प्रेरणादायक लगी। साथ ही क्रम हेलो युवाणी में श्रोताओं के पसंद के गीत और बातचीत सुन मन प्रसन्न हो गया। सफल प्रस्तुति हेतु दीपाली चंद्राकर, विदिशा वर्मा और अपेक्षा शुक्ला को बधाई। साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले पत्र पे जो हमें जो लिखते हैं, आजकल में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस, इस पर चर्चा की गई जो हमें पसंद आई। साथ ही पत्र मिला और क्रम यादें की सफल प्रस्तुति हेतु पूरे अनुभाग को बधाई। ये पत्र आया हमें महासमुंद से रोशनी और छाया की ओर से।
0: साथियों आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया हमें इतने सारे प्यारे प्यारे पत्र भेजने के लिए जिसमें आपने कोशिश की है कि आप हर क्रम के बारे में बात करें। और दोस्तों हमारा भी यही प्रयास होता है कि हम हर क्रम में कुछ नया आपके सामने लेकर आएं, स्वस्थ मनोरंजन, नए ज्ञान की बातें और साथ ही कुछ ऐसी जानकारी जिसे जानकर आपको खुशी हो। और इसी के साथ आदित्य बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ईमेल के माध्यम से हमें किन श्रोता साथियों ने पत्र भेजे हैं।
1: तो पहला ईमेल हमें आया है ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश सिलोचनी का। आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के बारे में जानकारी दी गई। विश्व की पहली महिला राजदूत अलेक्जेंड्रा के बारे में भी बताया गया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के योगदान की सराहना अवश्य करनी चाहिए तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग देना चाहिए। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम के संबंध में उनके विचार और सुझाव सुनने को मिले। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भी सुनने को मिला। कार्यक्रम के उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए काजल साहू एवं सूर्य तिवारी का हृदय से धन्यवाद। और इस दिन के लिए हमें और भी पत्र ईमेल आए हैं वार्ड नंबर 2 गंडई पंडारिया से शिवा यादव राज यादव की ओर से, करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मलकर, चांदनी चौक गंडई पंडारिया से पवन कुमार, सेन प्रभा देवी सेन से।
0: आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनने और अपने बहुमूल्य विचार हमें भेजने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हमें प्रसन्नता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस पर आधारित जानकारी, श्रोताओं के पत्रों पर आधारित प्रस्तुति और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आया। दोस्तों महिलाओं के योगदान के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का संदेश अत्यंत सराहनीय है। आपके स्नेह विश्वास और प्रोत्साहन से हमें निरंतर बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। भविष्य में भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें इसी प्रकार भेजते रहें। एक बार फिर इस पत्र के लिए आपका धन्यवाद।
1: अगला पत्र हमें आया है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह और अनिल की ओर से और ये लिखते हैं, कार्यक्रम युववाणी को लेकर हमारे युवा साथी सूर्या और श्रिया चक्रवर्ती ने आजकल में अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके साथ ही क्रम सेहत में डॉक्टर एस एन मंडड़िया ने युवाओं में बढ़ते उच्च रक्तचाप के कारणों, बचाव और उपचार के बारे में उपयोगी जानकारी दी। उनसे बातचीत दीपक हटवार ने की जो अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इसके बाद अपनी पसंद क्रम में अच्छे

0: अच्छे फिल्मी गीत सुनने को मिले जो बहुत पसंद आए। इस दिन की शानदार प्रस्तुति के लिए सूर्या तिवारी और श्रिया चक्रवर्ती, दीपक हटवार और एवं डॉक्टर एस एन मंडहड़िया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस दिन के लिए हमें और भी पत्र आए हैं धरसीवा से, छेदूलाल, सीता, दुर्गा पारा, संतोषी नगर, रायपुर, पुष्पलता, अर्पिता।
1: ये जानकर प्रसन्नता हुई दोस्तों कि आपको युवाणी में अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस पर आधारित जो विशेष प्रस्तुति थी वो सार्थक लगी। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसके परिवार, समाज और भविष्य को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के से अवगत कराकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथ ही सेहत में युवाओं में बढ़ते उच्च रक्तचाप पर जो बातचीत की गई वो आपको पसंद आई। आपका स्नेह और विश्वास ही हमें समाज उपयोगी और अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। भविष्य में भी अपने बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें।
0: तो साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले पत्र की ओर जो हमें मिला है जिला

0: साथ ही सेहत में युवाओं में बढ़ते उच्च रक्तचाप पर जो बातचीत की गई वो आपको पसंद आई। आपका स्नेह और विश्वास ही हमें समाज उपयोगी और अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। भविष्य में भी अपने बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें।
1: तो साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले पत्र की ओर, जो हमें मिला है जिला राजनांदगांव से योगिता और गजेंद्र गुप्ता की ओर से, और ये लिखते हैं, 28 जून रविवार को हमें युववाणी कार्यक्रम सुनने का अवसर मिला, जिसकी प्रस्तुति मल्लिका और तेजेश्वरी साहू ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बीमा दिवस के अवसर पर बीमा के महत्व पर उपयोगी चर्चा सुनने को मिली। बताया गया कि कम प्रीमियम में भी बीमा कराया जा सकता है, जिससे दुर्घटना अथवा अन्य विपरीत परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद रागनंदिनी में रागनंद के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा उसी राग पर आधारित फिल्मी गीत भी सुनवाए गए। साथ ही महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के जीवन और संगीत यात्रा के बारे में भी रोचक जानकारी मिली। इसी क्रम में सवालों के आईने के अंक 103 के प्रश्न का उत्तर प्रसारित किया गया, जिसमें श्रोताओं के अधिक से अधिक ईमेल एवं पत्रों को शामिल किया गया। साथ ही अंक 104 का नया प्रश्न भी पूछा गया। संपूर्ण कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानवर्धक और मनोरंजक रहा। इसकी सफल एवं प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए मल्लिका और तेजेश्वरी साहू को हार्दिक बधाई।
0: दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय बीमा दिवस पर प्रस्तुत चर्चा आपको उपयोगी लगी। बीमा केवल आर्थिक सुरक्षा का साधन ही नहीं दोस्तों, बल्कि भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों में परिवार को संबल प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हमें ये जानकर भी खुशी हुई कि आपको क्रम रागनंदिनी में उस्ताद बिस्मिल्ला खां से जुड़ी जानकारी और क्रम सवालों के आईने जैसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण भी पसंद आए। हमारा सदैव यही प्रयास होता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपके लिए कुछ नया, उपयोगी और ज्ञानवर्धक लेकर आएं, ताकि मनोरंजन के साथ साथ आपकी जानकारी में भी निरंतर वृद्धि हो। आप जैसे जागरूक श्रोताओं का स्नेह और सहयोग ही हमें निरंतर बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार फिर इतने प्यारे पत्र के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: तो साथियों, अब बढ़ते हैं क्रम पत्र मिला के आखिरी पत्र की ओर, जो हमें आया है खैरागढ़ लालपुर से मोतीलाल एवं सुशीला भीमटे की ओर से। ये लिखते हैं, बारिश की रिमझिम फुहारों के संग 29 जून की युववाणी हमारे बीच लेकर आई मल्लिका और संस्कार। इस दिन के सभी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आए। कार्यक्रम आजकल में संत कबीरदास जयंती पर सार्थक एवं उपयोगी जानकारी दी गई। बातचीत के माध्यम से यह जानने को मिला कि संत कबीरदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंड तथा जाति पाति के भेदभाव का खुलकर विरोध किया और समाज को नई दिशा प्रदान की। उनके प्रेरणादायक जीवन एवं विचारों से परिचित होने का अवसर मिला। इसी दिन परिचर्चा का विषय था स्टार्टअप और आज के युवा। इसमें प्रतिभागी अभिषेक राव एवं वेदांग सिंह ठाकुर थे तथा संचालन अपेक्षा शुक्ला जी ने किया। परिचर्चा में स्टार्टअप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिली। दोनों प्रतिभागियों के विचार अत्यंत सारगर्भित एवं प्रेरणादायक रहे। वास्तव में स्टार्टअप संस्कृति ने आज के युवाओं की सोच को नई दिशा दी है और यह विश्वास जगाया है कि यदि आपके पास एक अच्छा विचार और उसे साकार करने का दृढ़ संकल्प हो तो आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद अपनी पसंद में फिल्मी नगमों का भरपूर आनंद लिया। कुल मिलाकर आज के युववाणी के सभी कार्यक्रम रोचक, मनोरंजक और एवं शिक्षाप्रद रहे। आज की उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए मल्लिका जी, संस्कार जी, परिचर्चा के सभी प्रतिभागियों तथा युववाणी अनुभाग को हमारी ओर से धन्यवाद। इस दिन के लिए हमें और भी पत्र आए हैं ग्राम दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू से, नानघाट काटल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री का, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान अनुभव की ओर से।
0: दोस्तों, सच में दिल खुश हो जाता है जब अपने नाम के पत्र सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। उस पल एहसास होता है कि कार्यक्रम के पीछे की हर छोटी बड़ी मेहनत, हर तैयारी, हर चर्चा और हर कोशिश सार्थक हो गई। लगता है कि जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते थे वो सचमुच आप तक पहुंची। 29 जून की युववाणी के संबंध में अपने विस्तृत और आत्मीय विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपके पत्र केवल प्रशंसा नहीं होते दोस्तों, बल्कि हमारे

हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। इन्हीं के कारण हर बार कुछ नया सोचने, बेहतर करने और आपके लिए कुछ नया मनोरंजक कार्यक्रम लेकर आने का उत्साह हमारे में होता है। आपका प्यार, विश्वास और स्नेह यूं ही बना रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और एक बार फिर इस पत्र के लिए, इतने प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अब जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है क्रम पत्र मिला युवाणी अनुभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। जो श्रोता साथी हमें ईमेल भेजना चाहते हैं वो हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए airyout9@gmail.com। और दोस्तों, सब्जेक्ट में कोड Y1 लिखना न भूलें। इसी के साथ क्रम पत्र मिला समाप्त होता है।

0: अरे तुम कब से अपने फोन में बिजी हो, क्या कर रही हो?
1: अरे आदित्य, मुझे ना अचानक मेरे नानी घर की तस्वीरें दिख गई और मुझे मेरे बचपन की छुट्टियां याद आ गई।
0: अच्छा हाँ मलिका, वो दिन अलग ही हुआ करते थे।
1: बिल्कुल, और तुम्हें पता है मुझे बचपन में पुराने गीत पसंद नहीं थे। नाना जी जब भी सुबह कैसेट में कोई पुराना गीत लगाते तो मैं उन्हें बोलकर चेंज करवा देती थी।
0: हाँ मलिका, मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। हम कभी कार में घूमने जाते और रेडियो पर 70s 80s के दशक के गीत आते तो मैं बैंड बदल दिया करता था।
1: लेकिन तुम्हें पता है अब एहसास होता है कि पुरानी यादें और पुराने गीत दोनों ही दिल को कितना सुकून देते हैं।
0: बिल्कुल मलिका, तो चलो अब हम अपने श्रोताओं की याद भी ताज़ा करते हैं और उन्हें कुछ बेहतरीन नगमे सुनाते हैं।
1: तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुनहरी यादों का सिलसिला क्रम यादें की इस पहली प्रस्तुति के साथ।

0: बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत था मजरू सुल्तानपुरी का, संगीतकार थे आर डी बर्मन।
1: फरमाइश आई थी चिरिमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान अनुभव ऋषभ राम सहोद और नारायण दिनेश कालिंद्री लहरे की, मदनपुर कवर्धा से श्रवण योगेश राहुल साहू की, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी की, राजनगांव से बीरेंद्र अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता की।
0: दोस्तों एक दिलचस्प बात आपने भी ज़रूर महसूस की होगी, पुराने गीतों की खासियत यह है कि इन्हें जितनी बार सुनिए हर बार कुछ नया महसूस होता है।
1: बिल्कुल, और आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर आगे बढ़ने की जल्दी में पीछे छूट गई खूबसूरत यादों को भूल जाते हैं, लेकिन पुराने गीत हमें कुछ पल रुकना सिखाते हैं, अपनों के साथ बैठना सिखाते हैं और छोटी छोटी खुशियों की अहमियत याद दिलाते हैं।
0: ये गीत हमें बताते हैं कि असली खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रस्तुति की ओर।

0: आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर और संगीत में इंदिवर के बोल, फिल्म थी प्रेम गीत।
1: और इस गाने के पसंदकर्ता हैं बिलाईगढ़ से रोशन लाल, कौशल्या, हेमलता, टिम्पल देवांगन, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, आवरा डबरी से श्याम लाल, मोंगरा, संगीता, केशरी, चिंकी साहू और दीपेश वर्मा।
0: अच्छा, कभी तुमने गौर किया है आदित्य, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम सालों तक नहीं सुनते, लेकिन जैसे ही कहीं उनकी पहली धुन कानों में पड़ती है, बिना कोशिश किए ही होठ बोल उठते हैं, अरे ये तो मेरा पसंदीदा गाना है। यही जादू है पुराने गीतों का।
1: बिल्कुल, सोचिए आज से 40-50 साल पहले जब सोशल मीडिया था, ना म्यूजिक एप्स ना प्लेलिस्ट, फिर भी एक गीत पूरे देश की जुबान पर चढ़ जाता था। लोग रेडियो के सामने बैठकर इंतजार करते थे कि कब उनका पसंदीदा गीत बजे। गीत सुनने का आनंद सिर्फ संगीत नहीं था, वह एक पूरा अनुभव था।
0: और दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई पुराना गीत बजता है तो उम्र मायने नहीं रखती। नाना नानी मुस्कुराते हैं, माता पिता गुनगुनाते हैं, लगता है कि नई और पुरानी पीढ़ी साथ बैठकर कह रही हो, वाह क्या धुन है।
1: तो आइए आज शब्दों की नहीं सुरों की भाषा में बात करते हैं।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में ये था फिल्म शोर का गीत। गीतकार संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: और इस गाने के पसंदकर्ता थे बाग बहारा से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन, टिकरा पारा रायपुर से लता देवी चौहान, महासमुंद से भीष्म दास, नर्मदा, हिरमणि, दीपक लक्ष्यदास, ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश, मुकुंद, पुणेन्द्र, साहिल, चंद्राकर।
0: किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है दोस्तों, पुरानी किताबों की खुशबू, पुराने खतों की लिखावट और पुराने गीतों की मिठास, इनकी जगह कोई नई चीज़ कभी नहीं ले सकती।
1: शायद इसलिए समय बदलता रहता है लेकिन कुछ गीत हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। चलिए इस खूबसूरत कारवा को आगे बढ़ाते हैं
0: और सुनते हैं अंतिम प्रस्तुति।

0: दूर गगन की छाव में इस फिल्म के लिए स्वर, गीत और संगीत किशोर कुमार का था। फरमाइश की थी गुड़ाराज से मनोज, चित्ररेखा देवेंद्र, लवीना चंचल वासनी ने, नरगुड़ा से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी जोगेश पुरी, ट्विंकल गोस्वामी ने।
1: साथियों, आज के युववाणी में इतना ही, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रम से अवगत कराते हैं। कल की युववाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जहां आप सुनेंगे माटी के आखर में गणेश्वर पटेल का कविता पाठ और माटी के गीत। तो अब दीजिए आदित्य शुक्ला को
0: और मल्लिका सुभाषीष को इजाजत। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र हैं। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है।

0: अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू। इमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहल ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू। और 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपया के कमी आज ले नवा दर लागू। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है कहीन कि वीबी जी राम जी अधिनियम में अवैया ग्रामीण परिवार ला हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। एखले ग्रामीण भारत सशक्त बनी। वर्तमान वित्तीय बछर में ये योजना ला चलाए बर 95,692 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में अवैया संशोधित पारिश्रामिक दर आज ले लागू हो गए है। राष्ट्रीय औसत पारिश्रामिक मनरेगा के 258.80 रुपया ले बढ़ा के विकसित भारत जी राम जी माँ अवैया 327.40 रुपया रोज के कर देगे है। इसने पारिश्रामिक दर में 10 ले ज्यादा के औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जहां पहली मजदूरी 300 ले कम रही उन्हें अब नवा दर लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होयला

0: एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई है। श्री चौहान हा कहिन की ए अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिक मन बर गरिमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करे के नवा अध्याय है। उन्होंने कहिन की ए अधिनियम गांव के हर एक परिवार ला 125 दिन के रोजगार के वैधानिक अधिकार देते। तेल विपणन कंपनी हा 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम मा 183.50 रुपया के कमी करे है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नवा दर आज ले लागू हो गए है। एक कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली मा 2,930 रुपया मा मिली। ए फैसला ले रेस्टोरेंट ढाबा होटल और आने खान पान के व्यवसायी मन ला लाभ मिली। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू हो गए है। अब उपभोक्ता मल्ला प्रति यूनिट 30 से 50 पैसा ज्यादा बिल देना होगी। गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा से 40 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुए है। उन्हें कृषि पंप के दर 40 पैसा प्रति यूनिट महंगा करे गए है। एक संग नवा टैरिफ में कतकोन बदलाव करे गए है। एमा बिजली बिल के पहली भुगतान करे जाए मा 1.25% छूट ला घटा के 0.75% कर दे गए है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हा शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल में काम करैया पात्र शिक्षक मन के शिक्षा सत्र 2026-27 के आखिरी तक पुनर्नियुक्ति दे के स्वीकृति जारी करे है। इमा सहायक शिक्षक ले लेके प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल है। लोक शिक्षण संचालनालय ला निर्देश दे गए है कि सबो जिला में जरूरी कार्यवाही जल्दी पूरा करे जाए। बीमित मनखे मन बर बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज ले अवैया बछर 30 जून तक बढ़ा देगे है। एकरे संग नवा ईएसआई अस्पताल के प्रबंधन अब सीधा निगम डहार ले करे जाही, जेखर ले उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करे जा सके। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आज 11 बछर पूरा हो गए है। ए पहल ले देश भर में नागरिक ले जुड़े सीखे लेन देन करे और सरकारी सेवा के लाभ उठाए के तरीका ला बदल दे है। पाछू 11 बछर में भारत हा दुनिया के सबले बड़का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम ला एक तैयार करे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहे है कि डिजिटल इंडिया अभियान हा सुशासन ला नवा दिशा और देश के सबो विकास काम ला गति दे है। उमना कहिन है कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिया ले सरकारी सहायता पारदर्शिता के संग सीधा लाभ पवैया मंत्री पहुंचा थे। उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागलो आज 10 बछर पूरा हो गए है। ये योजना 1 जुलाई 2015 के शुरू करेगी रहीस। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और कृषि भूमि ला सिंचाई के दायरा में ला के खेती में बड़का बदलाव लाए में मददगार साबित हुई है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाए जाते। ये दिवस जन स्वास्थ्य के रक्षा के प्रति डॉक्टर मन के समर्पण और योगदान ला दिखाते। ये दिन हर बछर 1 जुलाई के डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती और पुण्यतिथि के याद में मनाए जाते। ये बछर के विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मा देश के सबो डॉक्टर मन ला शुभकामना दिन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मा आज छत्तीसगढ़ मा घलो आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। गौरेला पेंडा मरवाही जिला मा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मा अधिकारी और कर्मचारी मन बर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन करेगी। शिविर मा 55 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के स्वास्थ्य के जाँच करेगी। राज्य शासन हा कोरिया जिला के सोनहत इलाका मा बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड के जांच CBI ला सौंपे के अधिसूचना जारी कर दे है। जानबा के मुताबिक पाछू 16 जून के नवगई निवासी भरत सिंह घरवार उर्फ लल्ला सिंह के संग नागेंद्र सिंह और वीरेन्द्र सिंह के कार मा जिंदा जला के हत्या कर देगी रहीस। ए मामला के जाँच अब CBI कर ही। जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडी नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह काली 2 जुलाई के आयोजित करे जाही। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हो ही। उन्हें कार्यक्रम के अध्यक्ष

0: अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण सावकर ही। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सबो नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता के शपथ लिही। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग हा धमतरी जिला मा एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना ला मंजूरी दे दे है। एक नवा एकलव्य विद्यालय मा छात्र छात्रा के विकास पर विश्व स्तरीय सुविधा मुहाय करे जाही। संगे संग विद्यार्थी मन ला नीट जेईई और क्लैट जैसन राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षा भर अनुभवी शिक्षक मन डहा ले विशेष कोचिंग और कैरियर काउंसलिंग दे जाही। नवा संस्थान के शुरू हो जाए ले जिला के दुर्गम और वन क्षेत्र के हुनहार आदिवासी विद्यार्थी मन ला आधुनिक उत्कृष्ट और निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिल सकी। जानवा के मुताबिक जिला के नगरी विकास खंड के पथरीडी में पहली ले एक आदर्श विद्यालय संचालित है। कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर पुलिस और एंटी पोचिंग टीम हा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा में वन्य जीव तस्करी के नेटवर्क के खुलासा करे है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन विभाग और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में दो बाघ के खाल के संग दो आरोपी मनला गिरफ्तार करे गए है। जांच में आरोपी मन तिल्ले पेंगोलिन के शल्क घलो बरामद करे गए है। दोनों आरोपी पुलिस विभाग ले जुड़े बताए जावत है। अव अब थोरकून समाचार सारमा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर ला शैक्षणिक सत्र 2026-27 बर 125 MBBS सीट बर मान्यता के नवीनीकरण प्रदान करे है। राज्य शासन हा श्रम विभाग मा 11 अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश जारी करे है। सबो अधिकारी मल्ला प्रशासनिक दृष्टिकोण ले अवैया आदेश तक नवा पद स्थापना दे गए है। उन्हें 33 जिला मा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के घलो तबादला करे गए है। कोंडागांव जिला के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB हा स्टेनोटाइपिस्ट के नामांतरण के मामला में एक किसान ला 10,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। रायगढ़ जिला के गढ़घोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग के टीम हा कुरकुट नदी ले रेत के अवैध परिवहन करत 12 ट्रैक्टर ला जब्त करे गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा लागू। एमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होही। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम मा 183.50 रुपया के कमी आज ले नवा दर लागू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: इतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीयसेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविधक्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारिकादूतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे 48,100 AE राष्ट्रियराजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतुविभागः अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिणपश्चिम प्रावृट्कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तरप्रदेशे, बिहारे, उत्तराखण्डे, ओडिशा प्रदेशे, विदर्भक्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतुविभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16 चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन।

उन AIR और DTH पर, चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी

0: नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी अधिनियम आज से देश भर में लागू, इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस तरह से मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
6: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
5: श्री चौहान कल 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकास खंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25% छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थीं। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन के अंतर्गत दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से बदला जाएगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2000

0: 1930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य भी शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाही जल्द पूरी की जाए। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि बीते 16 जून को नवगई निवासी भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर तक डिजिटल प्रशिक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, नमो ऐप के उपयोग और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में एंटी पोचिंग टीम ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 बाघों की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के पास से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरीकला में आज 3 नकाबपोश लुटेरों ने सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार ये नकाबपोश एक मोटरसाइकिल से ग्रामीण बैंक के पास स्थित ज्वेलर्स दुकान पहुंचे और दुकान संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी MB पटेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से

0: अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104,54,00,000 रूपये से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने धमतरी जिले में एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने स्टेनोटाइपिस्ट को नामांतरण के एक मामले में किसान से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कुरकुट नदी से रेत का अवैध परिवहन करते 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। VBG रामजी अधिनियम आज से देशभर में लागू। इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सात बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं इकरार बाय चांस इस फिल्म का गीत, श्रेया घोषाल और विजय प्रकाश की आवाजें, महबूब के बोल, संदेश शांडिल्य का संगीत।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में ये था अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, संगीत शंकर एहसान और लॉय का था और फिल्म का नाम था टू स्टेट्स। अब आपको सुनवा रहे हैं आरक्षण, इस फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम नीतू, संगे संग चौपाल सुनिए जम्मू संगवारी मन घलो हमर दोनों के
0: राम राम।
1: बने बने नीतू।
0: अरे काला बने कही बे दीदी,
1: कैसे हो गए?
0: आसार लग गए।
1: हाँ।
0: पानी के नाव नहीं है भैगे, पानी के अगोरा है दीदी सबला।
1: वो तो है नीतू, सही कहते हैं। अब देख अब जी, हाँ का है पानी गिरे है ना, वहाँ बुआई बुता हो गई, वो तक काम है।
0: हाँ।
1: और जिकर मेरे पानी के व्यवस्था है माने बोर पंप के सुविधा है, तिखर थरहा गला तैयार हो गए।
0: हाँ।
1: है नी
0: बिल्कुल दीदी। फिर अभी के बेरा

0: तो किसानी काम शुरू होते और
1: हाँ
0: किसान किसानी बूता के में माते रहते।
1: बिल्कुल सही कहे, नहीं तो मानसून के आते नहीं, खेत के जुताई, धान मक्का की बुआई, साग सब्जी की फसल लेवैया मन के रोपाई घलो तो इहीच महीना में होते।
0: और दीदी आषाढ़ के महीना में खेती के काम ऐसा होते कि पहली पानी गिरी वहाँ किसान खेत के जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बनाते ताकि बीज जो है वह आसानी से अंकुरित हो सके।
1: हाँ बने ओखर अंकुरित हो, बने निकले ऐसे ढंग है ना, तो वही बेरा में यही बेरा है। नीतू जब धान के जो फसल ले वही है, जो किसान है वो नर्सरी तैयार करके ओला खेत में रोपते है ना।
0: दीदी संगे संग ना खरीफ फसल जैसे मक्का ज्वार बाजरा अरहर के जिन बोनी घलो आषाढ़ के महीना में होते।
1: बिल्कुल
0: ऐसने सब्जी फसल के कहूँ बात करन तो तरोई करेला लौकी कद्दू खीरा ऐसन हरियर साग सब्जी के जिन बोनी घलो इही महीना में होते।
1: तो नीतू देखिए, तो हम गोट करत रहेन कि महीना के किसानी काम के बारे में है ना। फिर किसानी बूता जोर तो तब धरिए जब झमाझम वर्षा होई, है नहीं।
0: दीदी हाँ
1: तो फिर अभी तो देख किसान जो उन्हें संसो करत यही कहते, जो एक गीत में कहते।

0: संगवारी हो ये रही ने नवल दास मानिकपुरी और अनसुया मानिकपुरी।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और नीतू अब संगवारी मन ला गोरा है कि नीतू दीदी चिट्ठी ला कब पढ़ी इसी के तो शुरू कर संगवारी मन जो चिट्ठी भेजे हैं मेल भेजे हैं तो उन्हें पढ़े बस शुरू कर दे
1: बड़कन है दीदी मेल तो हमारे संगवारी मन के जी मैं ये जन पहली मेल आ है हमारे कार्यक्रम 25 जून के बुधवार पर और अब जन लिखे हमारे संगवारी मन है ये मन है मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू मन हम ये मन लिखते कि गुरुवार 25 जून किसानवाड़ी में आज की सलाह क्रम में दे गए जानकारी के विषय के संबंध में ये दिन के विषय ही से वर्षा के पहली पशु के आवास चारा के प्रबंधन रोग राई और टीकाकरण ये संबंध में विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सिन्हा जी है बहुत ही बढ़िया ढंग ले बतें जौन बेरा के ही से अतका सुघर जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ और चौपाल प्रभागला बधाई है हमारे संगवारी मन हाँ
0: तो देख ऐसे है नीतू पशुधन तो किसान के बल बहिया होते हो जानगर होते हैं और मौसम मुताबिक पशुधन के आवास व्यवस्था आहार व्यवस्था टीकाकरण सब वो बहुत जरूरी होते हैं ना। और देख अभी जो है बरसात के दिन है तो ये दिन में तो क्या है संक्रमण जो है बहुत जल्दी होते हैं ते पाए के आवास चारा प्रबंधन और रोग बीमारी ले बचाव खातिर समय समय में टीकाकरण बहुत जरूरी होते हैं ना। और यही सब वो बात ले ये दिन जो है पशु चिकित्सक द्वारा फरियार के बताए गए रही से जो संगवारी मन ला उपयोगी लगी संगवारी मन चिट्ठी लिखी निखर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दूसर मेल आए है दीदी हमारे कार्यक्रम शुक्रवार के 26 जून ये मन हाँ लिखते हमारे फोन इन कार्यक्रम पर भेजे है मन हाँ। हेलो चौपाल पर ये मन बोलते है कि ये दिन के विषय ही से बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग जेखर बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर तोरण लाल साहू बहुत सुघर जानकारी दें वही मन लिखते संगवारी मन हाँ कि फोन में जिन पूछे सवाल है वो बहुत ही अच्छा ढंग ले हमारे जिन विशेषज्ञ घर समाज

0: अपन हन बहुत अच्छा से करी ने तेखर बर विशेषज्ञ मन लई मन हा चौपाल प्रभाग ला औ दुनो ला बधाई पठो है। ये बधाई पठो है हमर संगवारी देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक, मुकेश कुमार रजक युवान औ काव्या तनु रजक मन
1: ठीक है से हे नीतु बरसात आइस ना तहाल किसम किसम के फूल बोई शुरू हो जाए। बरसाते में सबो लगते है ना तभी कितना ना बरसात में पेड़ लगावा ऐसे की कावर की इही दिन में तो सबे लगते है तेमा कुछ फूल जोन होते है नीतु साल भर फूलते
0: हाँ।
1: कुछ सजावटी फूल होते जो सीजन में ही फूलते है ना और कुछ फूल जो है बहुवर्षीय होते और हर मौसम के अपन अलग अलग फूल होते है जेकर बारे में विशेषज्ञ जो बताइन है और संग में खातु माटी सिंचाई पानी बीजा ये सब बारे में भी मैंने विस्तार ले बताई है जौन ये जानकारी सही में बेरा के रही से संगवारी मतलब पसंद आई चिट्ठी लिखी ने खर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, पार्थ राजेन, मनहरन मुरली, सुजान वर्मा मन लिखे है 27 जून शनिवार के किसान वाड़ी में। आज के सलाह क्रम में खेत बचाओ अभियान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन उपयोग ये विषय में विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल चंद्र

0: मतलब पसंद है, चिट्ठी लिखी ने कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, पार्थ, राजेन, मनहरन, मुरली, सुजान वर्मा मन लिखे हैं 27 जून शनिवार के किसान वाड़ी में। आज के सलाह क्रम में खेत बचाओ अभियान, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन उपयोग, ये विषय में विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल चंद्राकर द्वारा बड़ सुघर ढंग ले जानकारी दे गई रही, जो उन अभी के समय में बहुत ही जरूरी है। हमला ये दिन के जानकारी बहुत अच्छा और बेरा के लागिस, अतका सुघर जानकारी के खातिर डॉक्टर साहब और चौपाल प्रभाग ला बधाई पठो है।
0: तो इसे है देख नी तू, फसल के अच्छा उत्पादन खातिर का है जो अंधाधुंध रासायनिक खातों के उपयोग होए है ना, है ना, और हुआ थे
1: हाँ,
0: तो जेखर ले का है खेत के माटी के क्षरण हुआ थे
1: हाँ,
0: पर्यावरण संतुलन बिगड़ा थे और यही ला चेत करत शासन द्वारा किसान मन ला जागरूक करे खातिर का है खेत बचाओ अभियान चलाए जावा
1: हाँ,
0: और जैव उर्वरक के उपयोग ला बढ़ावा दे जाते देख एला बढ़ावा दे के का है भरपूर एवं कोशिश करत है, जेकर बारे में डॉक्टर चंद्राकर जी जो बने फरियार फरियार के बताई जो संगवारी मन थे कि मनला बहुत उपयोगी लगी, तो संगवारी मन चिट्ठी लिखी मेल भेजी ने कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 29 तारीख सोमवार के चौपाल कार्यक्रम आज की सलाह क्रम में जानकारी के विषय ही से दूध के एंटीबायोटिक्स अवशेष और मानव स्वास्थ्य ऊपर ओखर प्रभाव, ये विषय में विशेषज्ञ डॉक्टर नमिता शुक्ला जानकारी दे गई रही ने, जौन हमार बार बहुत ही उपयोगी और बेरा के रही, अतका सुघर जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ और चौपाल प्रभागला बधाई दे हमार ये संगवारी मन पथरिया भरे वाले चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल मन।
0: तो देख ऐसे है नीतू की गाय के दूध ला तो एक संपूर्ण आहार माने जाते हैं ना, जो लड़का सियान जवान सबो पर जरूरी और उपयुक्त माने जाते हैं, फिर एमा एंटीबायोटिक अवशेष कैसे रह जाते और मनखे के स्वास्थ्य ऊपर कैसे प्रभाव पड़ते, तही ले बड़ा सुघर ढंग ले बड़ा विस्तार से बताई ने जो सिरतोन में बहुत जरूरी जानकारी रही से, तो उन संगवारी मन हा सुनी है और ये सुने के संगे संग गुने के जरूरत है ना, तो संगवारी मन दिन के जानकारी जो है उपयोगी लगी से चिट्ठी लिखी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदी आगू हमार जैन संगवारी है ओमन 30 जून मंगलवार के चौपाल कार्यक्रम पर हमारे मेल भेजे हैं, ये मैं लिखते हैं कि ये दिन के क्रम रही हेलो किसानवाणी फोन इन कार्यक्रम, जेमा हमार सुरक्षित भविष्य के आधार जैव विविधता के संरक्षण, ये विषय में विशेषज्ञ डॉक्टर पुणेन्द्र साहू द्वारा संगवारी मन के पूछे गए समस्या के समाधान करिन फोन द्वारा और विस्तार ले जानकारी बतैन, तेनहा बहुत ही लाभदायक और हमार बार उपयोगी लागिस, अतका सुघर बात बड़ सुघर ढंग ले बतैन जौन हमार मन बर बहुत ही उपयोगी रही, ये दिन के जानकारी खातिर विशेषज्ञ और चौपाल प्रभागला बधाई पठो हैं, और ये बधाई पठो हैं तेंदु भाटाले, उमेंद कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका निषाद, यशस्वी, भास्कर, नूतन, सुरेंद्र, किशन मनहा।
0: नीतू देख प्रकृति में पाए जाने वाला जो पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, उखर जो है पारस्परिक संबंध है, वही जैव विविधता होते इसे हमारे विशेषज्ञ बताते हैं, और अभी का है जलवायु परिवर्तन देखत है ना, ऐसा प्रजाति के फसल लगाया जाए जिससे जो है जल्दी हो जाए, ऐसे विशेषज्ञ मन बतावा थे, और इसने यही सब बातला ओ दिन के जो जानकारी रही सोमा बताइन है संगवारी मन के समस्या के समाधान भी करिन फोन द्वारा, तो जो हमार संगवारी मन ला बहुत अच्छा लगी उपयोगी लगी चिट्ठी लिखी ने खर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतू ये तो रही से क्रम चिट्ठी मिलिस है ना,
1: हमार संगवारी मन तो दीदी कई ठन कार्यक्रम ला पसंद करते, काबर की उखर कहना चाहिए मन के लाइक जानकारी हमन देथन,
0: बिल्कुल वो तो बेरा बेरा में हर क्रम में अलग अलग प्रकार के जानकारी लेके आथन, समसामयिक विषय में चर्चा लेके आथन।
1: तो आजो दीदी जिन क्रम है हमार आज की सलाह, इनमें जानकारी के विषय है जैव उर्वरक अपनाए उत्पादन बढ़ाए, और जानकारी दे बर हमार बीच है विशेषज्ञ दीपमाला लकड़ा, विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटा पारा ले, तो आवा सुनथन संगवारी हो इखर ले होए गुड बात। संगवारी हो हवा माटी पानी ये हरे हमार खेती के आधार, फिर खेती के जब आधार ही संगवारी हो तो हम जानथन कि एखर बिना खेती त असंभव ही है, तेखरे पाए के हमार प्रयास रही थे कि जिन खेती के आधार हवा माटी पानी है ओला हमन हा सुरक्षित राखन अवैया पीढ़ी बर ओला बने असन राखन, तेखरे पाए के हमार विशेषज्ञ मन बताते कि जब हम खेती करन त ऐसे खेती करन जेखर ले एमन हा बाँचे रहे, आजकल देखथन संगवारी हो रासायनिक उर्वरक रासायनिक खाद के उपयोग के सेती हमार जेन हवा पानी माटी है खर जेन क्षमता है वो हक कमती हो जाते, तेखरे पाए के हमार विशेषज्ञ मन बताते कि हमन हा ज्यादा से ज्यादा एखर उपयोग झन कर, त संगवारी हो यही बात ला ध्यान में राखत हुए आज हमन हा जानकारी लेथन खेती बर जैव उर्वरक अपनावन

0: उत्पादन ला बढ़ावन, ये विषय मा जानकारी दे बर हमर बीच है दीप मालक। ये मन है विषय वस्तु विशेषज्ञ, पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा ले। राम राम दीप माला मैडम जी।
1: राम राम मैडम।
0: मैडम जी, सबले पहले हमारे संगवारी मल्ला बताते हो कि ये जैव उर्वरक वो का हरे।
1: जैव उर्वरक जो है वो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक उत्पाद है
0: जी,
1: जिसको हम आम तौर पर बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। और सरल शब्दों में अगर कहें तो जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया से बने प्राकृतिक उत्पाद
0: जी, जी।
1: जब इन्हें बीज पौधों की सतह या मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए घुलनशील बनाते हैं
0: जी,
1: और फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं
0: जी जी।
1: यह रासायनिक खादों जैसे यूरिया, डीएपी का एक सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है।
0: अब हमारे संगवारी मल्ला बताते हो कि ये जो जैव उर्वरक है ओखर का लाभ है।
1: जैव उर्वरक के जो लाभ है उसका पहला लाभ तो ये है कि कम लागत
0: जी,
1: मतलब हम इतने अधिक रासायनिक खादों का उपयोग करते जा रहे हैं जिससे हमारी जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है
0: जी,
1: फसल का उत्पादन है वो भी कम होते जा रहा है
0: जी, जी।
1: तो अगर हम जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं तो यह रासायनिक खादों की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं जिससे खेती की जो लागत होती है कम होती है
0: जी जी।
1: दूसरा ये है कि पैदावार में बढ़ोतरी
0: जी,
1: इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार में 10% से लेके 25% तक की वृद्धि देखी गई
0: जी जी जी।
1: साथ ही साथ मिट्टी की सेहत में सुधार, जैसे मैंने अभी बताया कि रासायनिक खादों का उपयोग करने से मिट्टी की जो संरचना है वो कड़ा हो गया है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए या जैविक संरचना और जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरक का उपयोग करना बहुत अधिक जरूरी है
0: जी।
1: साथ ही साथ पौधों की रोग प्रतिरोधकता क्षमता भी इससे बढ़ती है, ये पौधों में मजबूती प्रदान करते हैं जिससे उनमें बीमारियों और लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी। रसायन की बचत तो होती ही है क्योंकि लगातार हम नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी की खपत बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं
0: जी जी।
1: इसका उपयोग करने से कम 20-25% तक हम यूरिया डीएपी का उपयोग कम किया जा सकता है
0: जी। तो देखे जाए तो जैव उर्वरक के बहुत अकन लाभ हमारे संगवारी मल्ला है। फिर आगू ये बताते हो कि जैव उर्वरक जो है वो कौन कौन से हैं।
1: जैव उर्वरक जो है ये हमारा है राइजोबियम कल्चर
0: जी,
1: एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, डीजीए जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी
0: जी,
1: पीएसडी, केएसडी, ये हमारे और एक है माइकोराइजा
0: जी,
1: हमारे मुख्य बायो फर्टिलाइजर है
0: जी जी। हाँ तो ये सब जो जैव उर्वरक है ओखर उपयोग हमार संगवारी मन हा कौन रकम ले करे ये बताते हो आप मन हा।
1: फसलों की श्रेणी के आधार पे अलग अलग जीवाणु कल्चर का उपयोग किया जाता है
0: जी,
1: जैसे पहला है जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक है
0: जी,
1: ये क्या काम करते हैं, हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है इसको सोख कर पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है
0: जी जी।
1: सबसे पहला है राइजोबियम कल्चर, इसका मुख्य रूप से राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहन फसलों में अधिक मात्रा में किया जाता है, अरहर, हमारा तिलहन फसल भी है, सोयाबीन है, मूंगफली है, चना, मटर, अरहर, ये सभी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है
0: जी।
1: यह पौधों की जड़ों में जो ग्रंथियां हैं नोड्यूल जो होते हैं
0: जी, जी
1: उसको बढ़ाता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचता है
0: जी,
1: और पौधों की जड़ों में इसका स्थिरीकरण करता है राइजोबियम कल्चर। वैसे है एजेक्टोबैक्टर है, इसका उपयोग गैर दलहनी फसलें जैसे गेहूं, मक्का, कपास, सरसों या सब्जी वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है एजोस्पाइरिलियम, इसका उपयोग अनाज या फिर गैर दलहनी फसलें जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास आदि पौधों में इसका उपयोग किया जाता है
0: जी।
1: ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं
0: जी।
1: अगला है हमारा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये धान के लिए

0: सबसे उत्तम जैविक खाद है, जो कि पौधे को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करता है।
1: जी जी
0: अगला है हमारा फास्फोरस घोलने वाला, मतलब फास्फोरस घोलक जीवाणु, जिसको हम पीएसबी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। घुलनशील रूप से जो मिट्टी में फास्फोरस पड़ा हुआ रहता है उसको वो घुलनशील फॉर्म में पौधों तक पहुंचाता है।
1: जी जी
0: पीएसबी बैक्टीरिया कठोर जो फास्फोरस है उसको घोलकर पौधों में पहुंचाता है, साथ ही साथ फसलों की वृद्धि में भी बढ़वार करता है।
1: जी जी
0: अगला है पोटेशियम पोषक तत्व, जिसको हम पोटेशियम सोलुबलाइज बैक्टीरिया, यह मिट्टी में मौजूद पोटेशियम को पौधों के लिए सुलभ बनाता है। माइकोराइजा, यह एक मित्र फंगस है जो पौधों की जड़ों का फैलाव में वृद्धि करता है, जिससे पौधे जमीन की गहराई से पानी, फास्फोरस, जस्ता एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनी ओर खींचता है और जड़ों में फिक्स करता है।
1: जी जी अब हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो दीपमाला जी कि हमारे किसान भाई मन हा एकर उपयोग कौन रकम ले करें?
0: ये जितने भी सारे मैंने माइक दी जैव उर्वरक, इसका उपयोग करने का तरीका है, हम सबसे पहले तो जो राइजोबियम है या पीएसबी है इसकी जो मात्रा होती है वो 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको लिया जाता है। जैव उर्वरक का उपयोग करने के लिए सबसे पहले गुड़ का घोल तैयार किया जाता है। गुड़ का घोल इसमें बायो फर्टिलाइजर को चिपकाने के लिए गुड़ के घोल का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे हम 10 से 12 किलो अगर बीज ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम गुड़ लेना है और आधा लीटर पानी लेना है।
1: जी जी
0: पानी में गुड़ को डालकर थोड़ा उबालना है ताकि जो गुड़ है वो पूरी तरीके से घुल जाए। जब गुड़ का घोल उबल जाए तो गैस से उतारकर इसको पूरी तरीके से हमको ठंडा करना।
1: जी जी
0: गर्म घोल में कभी भी बायो फर्टिलाइजर को नहीं डालना, जैव उर्वरक को नहीं डालना है।
1: जी जी
0: अगर हम गर्म घोल में अगर बायो फर्टिलाइजर को डालते हैं तो उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया है वो क्या है, तुरंत मर गए। जब हमने घोल तैयार कर लिया, जब गुड़ का पानी पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हमको इसका पैकेट आता है 200 ग्राम या 250 ग्राम का पैकेट आता है बायो फर्टिलाइजर का, तो जो हमारा गुड़ का घोल जो तैयार हुआ है उसमें अच्छी तरीके से इसको मिलाना है और घोलना है। उसके बाद ये हमारा चिपचिपा घोल तैयार हो जाएगा। फिर हमको बीजों में इसकी कटिंग करना है। जैसे 10-12 किलो बीज है इसको हम साफ प्लास्टिक शीट पे हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद जो तैयार हमारा गुड़ बायो फर्टिलाइजर का जो मिक्सचर है इसको बीज के ऊपर धीरे धीरे छिड़केंगे और हल्के हाथों से बीजों को आपस में मिलाएंगे। फिर उपचारित बीजों को 20 से 30 मिनट के लिए किसी छाया जगह में सुखाना है। सूखने के बाद 24 घंटे के भीतर में हमको इसकी बुआई कर दो। जैव उर्वरक का उपयोग हम बीज उपचार के लिए करते हैं। इसमें 10 ग्राम जैव उर्वरक किलो बीज के हिसाब से हम इस दवा का उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए। यदि हमें जड़ का उपचार करना है, जैसे हमारा नर्सरी में पौधा तैयार है, चाहे टमाटर का है या बैंगन का है या मिर्ची का है या धान का है, तो धान या सब्जियों की रोपाई से पहले हमको बायो फर्टिलाइजर के घोल में पौधों की जड़ों को 30 तक रखना है, फिर उसके बाद इससे में रुपाई करना। ये हो गया जड़ उपचार। अगला है मृदा उपचार। 2 से 3 किलो जैव उर्वरक को हम 50 से 100 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद या केचुआ की खाद है उसमें मिलाकर बुआई या रुपाई से ठीक पहले खेत में हम इसे करते हैं बीज उपचार।
1: मैडम जी अभी आप मन बताओ कि ये जो जैव उर्वरक है उखर ले बीज उपचार भी कर सकत हन, तो ये बताते हो कि ये जो बीज उपचार के सही नियम का हरे और उपचार करे के बेरा का सावधानी रखना चाहिए?
0: जैसे रासायनिक एवं जैविक दवाओं का उपयोग करते समय हमेशा एक क्रम होता है, एक नियम होता है जिसको बोलते हैं FIR। इस क्रम का आपको पालन करना चाहिए। एफ से होता है फफूंदनाशक फंजीसाइड, आई से होता है इंसेक्टिसाइड और आर से होता है राइजोबियम कल्चर या बायोफर्टिलाइजर

0: पहले हमको बीज उपचार अगर हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बीज उपचार के बारे में ही बताया था
1: जी जी,
0: तो इस क्रम में बीज उपचार करना जरूरी है। सबसे पहले फफूंदनाशक से उपचार करना है। फफूंदनाशक से उपचार करने के बाद हमें कीटनाशक से उपचार करना है। कीटनाशक से उपचार होने के बाद जैव उर्वरक का उपयोग करना है।
1: जी जी,
0: तो ये एक क्रम होता है FIR जिसे हम कहते हैं।
1: जी जी,
0: और बीज उपचार करने पे हमें महत्वपूर्ण किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो अनुशंसित मात्रा है उसका उपयोग करना चाहिए। उपचारित बीज खाने या पशु चारे के लिए उपयोग ना करें। जैविक उपचार करने के बाद बीजों को कभी भी तेज धूप में ना सुखाएं। जैविक एवं रासायनिक उपचार में उचित अंतर रखें। और जैविक उपचार करने के बाद बीजों को कभी भी तेज धूप में ना सुखाएं। उन्हें हमेशा किसी छायेदार जगह पर ही सुखाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद जीवित जीवाणु मरे नहीं।
1: दीपमाला जी, आप मन हा हमार संगवारी मन ला आज बहुत ही फरिया के खेती बर जैव उर्वरक अपनावन ए विषय में जानकारी दे, एखर बर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ये तो रही से आज की सलाह क्रम, इमा जय उर्वरक अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं, ये संबंध में दीपमाला लकड़ा जी जो बताइन अई खल्ले गोट बात करत रही हमारे नीतू दीदी।
1: दीदी ऐसे है कि अभी हमार छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के वन महोत्सव सप्ताह मनाए जाते हैं।
2: हाँ।
1: जे में ना दीदी बृहद रूप से वृक्षारोपण करना है, विविध वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम जगह जगह होते तो एक पाए के ना दीदी हमू अपन क्रम में आज है ना हमारे कार्यक्रम में विशेष वार्ता सुनथन वन महोत्सव सप्ताह है ना, एक बारे में बतावा थे डॉक्टर जी के दास, ये मन है प्राध्यापक मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
3: छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की विशेषता को देखें तो यहाँ पर जो है 44 44 44 एक हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें 44% जो है यहाँ पर वन है, 44% यहाँ पर STSC का पॉपुलेशन है और 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है। इस परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा इशू जो है बन रहा है। वर्तमान में पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है और जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे जो है आकलन किए गए हैं किन किन कारणों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उससे बचने के बहुत सारे उपाय सुझाव जो है दिए गए हैं। इसमें पृथ्वी में वन या वृक्षों की संख्या में कमी जो है देखी गई है और जब तक हम वन को जो है संरक्षित नहीं रखेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वन को या जंगल को धरती का फेफड़ा कहा गया है। जलवायु परिवर्तन में बहुत सारी गैसों का योगदान है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रमुख गैस है और इसका अवशोषण वृक्ष जितना ज़्यादा मात्रा में करता है समुद्र के बाद तो दूसरा कोई और जो है उपाय नहीं है। अन्य उपाय से हमको बहुत ज़्यादा खर्च का संभावना बढ़ जाता है, जबकि वृक्षारोपण से या वन का जो है संरक्षण करने से वन को और जो है आगे बढ़ाने से हम बहुत तेज़ी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकते हैं। पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। पेड़ का हमारे जीवन में अपना रोटी कपड़ा मकान जब कहते हैं तो इसका एक अलग महत्व है। वृक्षों का पेड़ों का हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्व भी है। आप देखेंगे हमारे पूर्वजों ने अनुभव से वृक्षों को पूजा करने का विधान बनाया है, इसके पीछे गूढ़ वैज्ञानिक भाव छुपा हुआ है, क्योंकि पेड़ की पूजा करने के माध्यम से पेड़ को लगाया जाता है और संरक्षित किया जाता है। अगर पेड़ को संरक्षित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है और रोटी कपड़ा मकान की बेसिक मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ति करने में सहायक होता है। अगर पेड़ों की संख्या कम होती है या जंगलों की जो है क्षेत्रफल में कमी पाई जाती है तो हम लोगों ने देखा है कि वर्षा की मात्रा में कमी होती है। एक तरफ पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी कमी तो करता ही है, मगर जो पानी को वर्षा की मात्रा को बढ़ाने में भी जो है वृक्षारोपण या जो वन जो है सहायक होता है। अगर हम पेड़ लगाते हैं या जंगलों क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तो ना ये पानी की ज्यादा मात्रा में जो है गिरने में सहायक होता है, परंतु जल संरक्षण में भी मदद करता है। जंगल में आप

0: देखेंगे जब पेड़ ज्यादा मात्रा में है या जिन क्षेत्रों में पेड़ ज्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं वहां पानी जो है मृदा में लंबे समय तक संरक्षित, तेज हवा के दुष्प्रभाव से भी जो है पेड़ जो है बचाता है। आप देखेंगे अगर हम खेती करते हैं तो तेज हवाएं चलती है, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए वैज्ञानिक लोग सलाह देते हैं कि विंड ब्रेक का जो है प्रयोग करें। विंड शेल्टर बोलते हैं, विंड ब्रेक बोलते हैं, मतलब जिस तरफ से हवाएं चलती है उस तरफ लंबे लंबे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं उनके जो है रोपण कर दें, तो वो उसके दुष्प्रभाव से फसलों को बचा सकता है। इसको हम विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जंगलों की मात्रा में वृद्धि होने से या पेड़ ज्यादा मात्रा में लगाने से हमको पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलता है, व्यक्तिगत जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मदद मिलता है, हमारे आध्यात्मिक उद्देश्यों को पूर्ति करने में मदद मिलता है। इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे पूर्वजों ने पेड़ों के महत्व को प्रतिपादित करते हैं, इसके संरक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उसका हमको पालन करना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तिगत आध्यात्मिक और पर्यावरण के संरक्षण में हमको जो है मदद मिल सके।
1: अभी सुनें विशेष वार्ता। जानकारी देते रहिए डॉक्टर जी के दास, प्राध्यापक मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले।
2: और नीतू अब संगवारी मना बता देता हूँ कृषक प्रश्न मंच क्रम के अंतर्गत आज के प्रश्न। तो संगीओ आज के प्रश्न है, हमारे लिख लो आप मन, वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाए जावत है। एक बार सुन लो संगीओ प्रश्न, वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाए जावत है। और संगीओ ये सवाल के जवाब झटकुन लिख के भेजो। पाछू हफ्ता जो आज के दिन प्रश्न पूछे रहे वो रही से फुट बाथ का होते। एकर सही जवाब है पशु आवास के बाहर ऐसा गड्ढा जेमा पोटेशियम पर मैग्नेट डार के बाहर ले अवैया पशु मन के पांव अपने अपन धूल जाते और बीमारी जो है वो कमती हो जाते। और सही जवाब कौन भेजे है नीतू तौन बता दे।
1: ये मन भेजे है दीदी नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा, बेमेतरले सुरेश सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेन्द्र ब्रिजरन सारथी, गर्रा पार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना मानवेंद्र, राकेश साहू।
2: तो ये सब संगवारी मन बहुत बहुत बधाई, कर जवाब सही है।
1: और संगवारी अब एक ठीक सूचना, संगवारी बता दन की अवैया शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के प्रसारित हुआ हेलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हुई धान के उन्नत सीधी बुआई विधि या जेनला DSR विधि भी कहे जाते। आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो विशेषज्ञ डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर हमला फोन कर सकत हो। हमार फोन नंबर ये रकम है 400-3482, दूसरा यह फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा यह फोन नंबर है 400-3484 और रायपुर के STD कोड है 0771। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग संगवारी हो शुक्रवार 3 जुलाई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संध्या 7:30 में करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही संगवारी हो, सूचना ईमेल सिरावत है।
2: एक बढ़िया से गीत सुनते नीतू नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी के स्वर में।
3: करिया करिया बादर घपटे चले पवन पुरवैया रे

0: ये रहने नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी असंगवारी हो। एकर पहली जोन हम गीत सुने रहे ओकर स्वर रही से केदार यादव और भिकम धर्माकर के।
1: दीदी घड़ी की इशारा हो गए, जाए के बेरा हो गए, तो जाती बिराती बताते थन काली के कार्यक्रम। काली चौपाल में आज की बात के संग किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में कटहल के व्यावसायिक खेती ये विषय में जानकारी सुनबो। विशेषज्ञ रही डॉक्टर अभय बिसेन, सहायक प्राध्यापक फल वैज्ञानिक पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव ले। संगे संग कृषक प्रश्नमंच गीत संगीत तक हो ही। तकाली फेर भेंट हो ही, तब तक नीतू शर्मा
0: और विनीता के देव विनीता ला देव विदा। राम राम,
1: राम, राम।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवा रहे हैं लव मैरिजेस फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग माँ। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मनोज वर्मा। कार्यक्रम में पहले सुनिए ये भजन, रचना कबीर दास की है।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे मनोज वर्मा, संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर अशोक कुर्म और हारमोनियम पर सौरभ महतो। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आज मेरे साथ हैं
1: प्रशांत कुमार। नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। अब स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
1: जी धर्मेंद्र, फीफा विश्व कप में फ्रांस, मैक्सिको और नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज इंग्लैंड का सामना कांगो से और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच 2020 क्रिकेट मैच के सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सवालेंका महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सेनर का दूसरे दौर का मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक पदक पक्का।
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर बोल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मैक्सिको ने इक्वाडोर पर जीत के साथ 40 साल बाद नॉकआउट का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में स्वीडन पर फ्रांस की 3-0 की जीत में एक बार फिर किलियन एम्बापे सबसे बड़े स्टार साबित हुए। विश्व कप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एम्बापे ने 45वें मिनट में अलिसो के पास को गोल में बदल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 53वें मिनट में बैडल बारकोवा ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इसके 21 मिनट बाद फ्रांस

0: के लिए तीसरा गोल फिर एम्बापे के जरिए आया और टीम की जीत लगभग पक्की हो गई।
1: Denied by millimeters, one of the great goals. It certainly would have been, and the technical ability that you need to execute this. His liquid goal, Michael Olise, absolutely wonderful to watch. And Mbappe! Star after French star. How they twinkle! The love here is for their leader, Didier Deschamps, at a time of personal loss.
0: इस गोल के साथ ही टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के 6 गोल हो गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की

0: की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी।
1: Absolutely sensational goal. So they've replied to one with one of their own. Oh, it's a lovely ball for Berg, for Haaland. He rolled it into an empty net. He gets all types of goals, but they all count the same. And on the big stage, this is a mighty one.
0: सह मेजबान मेक्सिको भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। 1986 में अपने घर में खेले गए विश्व कप में बुल्गारिया को हराने के बाद पहली बार जब मेक्सिको ने नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। जूलियन क्विनिक्स और राउल जिमनेज ने विजेता टीम के लिए गोल किया।
1: Côte d'Ivoire, gallant effort. They're out by the narrowest of margins. And Norway will play Brazil in the round of 16.
0: हम आपको बता दें कि मेक्सिको की टीम 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 विश्व कप में लगातार 7 नॉकआउट मुकाबले हार गई थी। वही 2022 कतर विश्व कप में टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: प्रशांत, जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की बात भी क्यों करना कर लें?
3: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। एशिया के सबसे पुराने डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल 24 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें से 60 टीमें टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले 25 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 शहरों में खेले जाएंगे।
4: दुनिया के तीसरे सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज कोलकाता में होगा, फिर 4 सप्ताह तक टीमों के बीच मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में भी खेले जाएंगे। वर्ष 1888 में शुरू हुए डोरन कप का फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में एक बार फिर इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग टीमें, सेना की टीमें, उभरती हुई घरेलू टीमें और विदेशी टीमें एक साथ खेलेंगी। साथ नई टीम में श्रीलंकाई सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी और मेघालय प्रीमियर लीग चैंपियन नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल का गढ़ कोलकाता एक बार फिर टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा, जहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण और किशोर भारती क्रीड़ांगण में 2 ग्रुप के मैच, उद्घाटन मैच, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल तथा फाइनल खेला जाएगा। ये शहर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल एफसी, मोहम्मदन एससी, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ, भारतीय सेना और नई टीम बागपत एफसी और समलेश्वरी स्पोर्टिंग की मेजबानी करेगा। रांची पहली बार डोरन कप की मेजबानी करेगा, जहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक लीग मुकाबले और 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये शहर जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना और डिफेंडर्स एफसी की मेजबानी करेगा। उधर इम्फाल का खुमान लंपक स्टेडियम 28 जुलाई से 17 अगस्त तक लीग मुकाबलों और 1 क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करेगा। इस ग्रुप में स्थानीय क्लब TRAUFC और निरोका एफसी, भारतीय नौसेना और पदार्पण कर रही एफसी रिंगडाई शामिल हैं। शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक लीग मुकाबलों के अलावा 1 सेमीफाइनल मैच होगा। इस मैदान पर शिलोंग, लाजोंग एफसी, नोंगसे एसएस एंड सीसी, लैंगसनिंग एफसी और पदार्पण कर रहा मुंबई एफसी खेलेगा। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम 1 से 13 अगस्त तक लीग चरण के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस ग्रुप की मुख्य टीम है, जिसमें एफसी वन बोडोलैंड एफसी और कार्बी आंगलांग मॉर्निंग स्टार एफसी भी शामिल है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: दोस्तों, फुटबॉल की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 मैच की सीरीज की शुरुआत आज से चेस्टर ली स्ट्रीट में होने जा रही है। आयरलैंड के हाथों पिछली सीरीज में 2-0 की हार के बाद अब हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की तेज उछाल भरी पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, और क्या पिछली सीरीज में बेंच पर इंतजार करते रह गए वैभव सूर्य

0: वंशी को मौका मिलेगा। सुनिए ये रिपोर्ट।
1: श्रृंखला एक सवाल अनेक। सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में मौका मिलेगा? क्या पिछली सीरीज में संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठाने और सूर्यवंशी को मौका देने का बड़ा कारण बन सकती है? टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहते, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पैक करने की बात कहकर काफी कुछ इशारा दे जाते हैं।
2: देखिए, अभी हर एक इंडिविजुअल जो जो टीम में खेल रहे सबने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि एक अकेले इंडिविजुअल ने किया है, बट हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योरिटी हमें बिल्ड करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस रहे गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट्स। एंड जो जो लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जीता है डेफिनेटली उनको एक तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20, और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे हैं, तो फिर पैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: सीरीज के शुरुआत के पहले भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशी ने इतना तो कह दिया है कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
3: He's absolutely ready to play international cricket. There's no doubt about that. I think it's not a question to say you can leave Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago, a guy who's had a fairly good IPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a long run in the team. So, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you all to see him play.
1: सवाल तो ये भी है कि पिछली सीरीज में बेअसर दिखी भारतीय बल्लेबाजी तेज और उछाल वाली मुश्किल विकेटों पर मेजबान टीम को कितनी चुनौती दे पाएगी। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं, साथ ही आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिनर भी हैं। वैसे भी रिवर साइड ग्राउंड पर गेंदबाजी का दबदबा रहा है, यहां न्यूनतम स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है। जाहिर है सीरीज काफी कठिन रहने वाली है, इस बात को कप्तान श्रेयस अय्यर भी मानते हैं।
2: All of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there, getting acclimatized to the wicket, to the conditions, we fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there. And over here also, the dimensions are pretty much similar, but the ground is flat and you feel the vibe, you feel the stadium vibe, the crowd would be intense as well. We've played in such conditions, such situations before.
1: उधर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथिल, विल जैक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटन जैसे नाम हैं। आयरलैंड के खिलाफ ट्रैक से उतरी दिखी भारतीय गेंदबाजी की अब और कड़ी परीक्षा होने वाली है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स भी कसौटी पर कसे जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरलैंड से हार के बाद हतोत्साहित टीम में कप्तान श्रेयस को नया जोश और जीतने का जुनून भरना ही होगा, तभी इस कठिन सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम अपना दबदबा बना पाएगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
4: अब बात T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। ICC ने T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने लगभग एक साल से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए, साहिबजादा फरहान तीसरे, फिल शॉल्ट चौथे, पाथम निसंगा पांचवें और तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं। वहीं बात अब महिला T20 क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया।
0: और प्रशांत, बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। प्रतियोगिता में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंडर 19 मिक्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के यिरेंग तांग और यी जियांग पर 11-9, 11-6, 11-7 की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई।
4: और अब बात विंबलडन पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के यानिक शेनर का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस के साथ चल रहा है। सातवीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज देर शाम दूसरे दौर में मिस्र के स्टाफिनोस सिटसिपास के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल

0: गर्ल्स में टॉप सीड सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गई है। नौवीं वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है।
1: और उधर भारत के बेलावन संथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर टूर मुंबई स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन से एक खबर है प्रशांत, जापान के यात्सुशिरो में भारत के ध्यान संतोष ने आज उलटफेर करते हुए थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नातात प्रेम पुंगवोंग को पराजित किया। संतोष ने लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में 21-17, 21-18 से जीत हासिल की।
0: और धर्मेंद्र, बॉक्सिंग से भी एक खबर आ रही है। भारत अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते खिलाड़ियों का मिलाजुला दल उतारेगा। ये प्रतियोगिता 3 से 16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय

0: की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर

0: पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी

0: तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

नवरंगी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज थी, भरत व्यास की बोल और सी रामचंद्र का संगीत। अमरदीप इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र किशन की बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 9:30 होने को है। चर्चा का विषय है, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष AI सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे AI सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो AI एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं AI एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
2: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
4: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा UPI जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे AI हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
2: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
3: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो UPI है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल। ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
2: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
5: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा

0: पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन,

0: दान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज

0: एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है, इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल।

0: इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन, जैसे इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है IDEX के थ्रू, वो भी इस

0: वो सिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन या SMS या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल

0: होगी, और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने MSME का जिक्र किया, तो जब MSME की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTAs साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और AgriStack जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11

0: वर्ष एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: चर्चा का विषय है।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायनी का लिखा गीत। संगीत रवि का है। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

कार्यक्रम में आप सुनिए हिल स्टेशन। इस फिल्म का गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, एसएच बिहारी के बोल हैं, संगीत हेमंत कुमार का।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जेलर का गीत, राजेंद्र किशन के बोल, मदन मोहन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये था फिल्म जेलर का गीत। संगीत मदन मोहन का था, गीतकार थे राजेंद्र किशन। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में राजेंद्र किशन का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का है और फिल्म का नाम है अनारकली।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ताजमहल का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, शायर के बोल, संगीत रोशन का।

ये था फिल्म ताजमहल का गीत, साहिर केबूल और रोशन का संगीत था। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं साहिर के लिखे एक और गीत को, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है बहू बेगम, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं दिल और मोहब्बत इस फिल्म का गीत, आवाज़ें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, ओपी नैयर का संगीत।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बिजोली पांडा का सितार पर बजाया राग किरवानी। इसमें प्रस्तुत है आलाप जोड़ के बाद विलंबित गत जो छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत की है विद्यानाथ सिंह ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी बिजोली पांडा का सितार पर बजाया राग किरवानी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 11 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR

0: 2-0 defeat to Ireland in their last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।